आकाशवाणी 103.7 MHz पर FM शिमला है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 का अषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS

एक शख को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी।

0: जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian Naval Band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's

भगवान का नाम लेकर हम जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो जाता है जिससे सकारात्मक भाव बनने लगता है और हम दिन भर उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं हिमांजलि।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह एफएम शिमला है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक और भक्तिमय रचना, मानस गान। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंद श्री। संगीतकार सतीश भाटिया।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते।

इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंद्रश्री। संगीतकार सतीश भाटिया। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश प्रेम का गीत।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। 6:57 हुए हैं। वक्त एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सड़क में प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सदर के कोटली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल की धार पंचायत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएगी। पिछले कल खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को आज व कल घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
4: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला।
1: साथ बजने वाले हैं, आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है।

0: श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं

0: शिक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशन की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: MHz पर आप आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन वाचक डॉक्टर हुकम शर्मा।

एक बार उपमन्यु के पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लुवी पौत्र इंद्रद्युम्न, शर्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वत्थराशों का पुत्र बुडिल, ये चार महागृहस्थ एकत्र होकर आपस में आत्मा और ब्रह्म के संबंध में विचार विमर्श करने लगे। जब वे किसी ठीक निर्णय पर ना पहुंचे, तब अरुण के पुत्र उदालक के पास जाकर इस रहस्य को समझने का निश्चय किया। उदालक ने जब इन्हें दूर से ही आते देखा, तभी उनका अभिप्राय समझ लिया और विचारा, इसका ठीक ठीक निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, अतएव इन्हें केकय के पुत्र राजा अश्वपति के पास भेजना चाहिए। उसने उनके आने पर कहा, भगवान, इस

श्वानर आत्मा को अश्वपति ही अच्छी प्रकार जानते हैं। चलिए हम लोग उन्हीं के पास चलें। और इस प्रकार सभी तैयार हो गए वह अश्वपति के यहां पधारे। राजा अश्वपति ने सभी ऋषियों के सत्कार का अलग अलग प्रबंध किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके सामने बहुत बड़ी अर्थराशि सेवा में रख दी, परंतु उन्होंने उसका स्पर्श तक नहीं किया। राजा ने सोचा, मालूम होता है ये मुझे अधर्मी अथवा दुराचारी समझ रहे हैं, इसलिए इस धन को दूषित समझकर ग्रहण नहीं करते। अतएव उसने कहा, ना तो मेरे राज्य में कोई चोर है, ना कोई कृपण, ना मद्यपाई। हमारे यहां सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा विद्वान हैं। कोई व्यभिचारी पुरुष भी मेरे देश में नहीं है। और जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है, तब स्त्री तो व्यभिचारिणी होगी ही कहां से। अतएव मेरे धन में कोई दोष नहीं है। ऋषियों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने सोचा, थोड़ा धन देखकर ये स्वीकार नहीं करते होंगे। अतएव उसने पुनः कहा, भगवान, मैं एक यज्ञ का आरंभ कर रहा हूं। उसमें प्रत्येक ऋत्विक को जितना धन दूंगा, उतना ही आप में से प्रत्येक को दूंगा। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, राजन, मनुष्य जिस प्रयोजन से जहां जाता है, उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिए। हम लोग आपके पास धन के लिए नहीं, अपितु वश्वानर आत्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, इसका उत्तर मैं प्रातःकाल दूंगा। दूसरे दिन पूर्वाह्न में वे हाथ में संहिता लेकर राजा के पास गए और राजा ने उन्हें बतलाया, यह समस्त विश्व भगवत स्वरूप है। आत्मा एवं परब्रह्म में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला सुन रहे हैं। 7:10 हुए हैं। आइए आपको बता दें कि आज आप कौन कौन से कार्यक्रम किस वक्त एफएम शिमला से सुन सकते हैं। 7:15 पर अब से थोड़ी देर बाद आप दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला सुनते हैं। 7:57 पर एफएम न्यूज़ हेडलाइंस, 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, 8:30 पर आप एफएम न्यूज़ हेडलाइन सुनते हैं, 8:32 पर लोक संगीत का आनंद लीजिएगा। आज 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। 9 हिंदी वार्ता आपके लिए रहेगी और पर आप हर दिन प्रादेशिक समाचार सुनते हैं और 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम को। 10 आज म्यूज़िक मेल कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें मेल पर आधारित आपकी जो भी फरमाइशें रहेंगे वह हम आप तक पहुंचाएंगे। 11 प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं और 11:05 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से पहाड़ी संगीत सुनिएगा। 11:30 पर 12 हिंदी में समाचार, 12:05 पर अंग्रेज़ी में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं और 12:10 पर फिल्म संगीत।

12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे। 1 बजे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में 1:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं। 1:10 पर म्यूजिक मस्ती, ये कार्यक्रम आपके लिए रहता है। और 2 बजे आप सुनते हैं सब रंग कार्यक्रम। 2:15 पर दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं। और 2:30 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपके लिए रहता है शिखरों के स्वर।

तीन बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं। सामयिक चर्चा 3:05 पर, ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत 3:10 पर आप सुनते हैं। युवा साथी सुनते हैं अपना कार्यक्रम युवाणी 3:30 पर। 4 बजे फिल्म संगीत आप सुनिएगा। प्रादेशिक बोलियों के कार्यक्रम में 4:20 पर आप सबसे पहले चंबियाली कार्यक्रम, मंडियाली सुनिएगा 4:50 पर, पंगवाली 5:20 पर। इसी बीच 5:50 पर लोक संगीत आप सुनेंगे और 6 बजे प्रादेशिक समाचार, 6:06 पर महाश्री कार्यक्रम, कुलवी 6:35 पर, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। किसान और बागवानों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत 7:10 पर पेश किया जाता है। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार, 7:56 पर रोजगार समाचार आप सुनते हैं। भूले बिसरे गीतों का पिटारा खुलता है 8:00।

8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनते हैं, 9:15 पर कार्यक्रम रहता है एक फिल्म से, 9:30 पर मेल पर आधारित कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन आपके लिए पेश किया जाता है, रात 10:00 आप गज़लों का लुत्फ़ उठाइएगा और 10:30 पर सदाबहार नगमे, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेज़ी में। तो ये हैं आज के कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। बस आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं, 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आत्मविश्वास रेखा दूसरा मित्र नहीं, आत्मविश्वास ही भावी उन्नति का मूल आधार है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। जी आप सभी जानते हैं, ये शब्द बोलने में सरल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मतलब है, इनकी जो सच्चाई है, बहुत गहरी है। हम एक शब्द में बहुत कुछ कह जाते हैं, यानी आत्मविश्वास हमारे लिए एक ऐसा प्राण है, एक ऐसी हमारे लिए सौगात है, जिसके आधार पर हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर लेते हैं, हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं। अगर हमारा आत्मविश्वास डामाडोल हो जाए तो फिर हम छोटे से छोटे कार्य में भी असफल हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम

अपना आत्मविश्वास अपने कार्यों से बनाएं और आत्मविश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ें। जैसे जैसे हम कार्य की पूर्ति करते रहेंगे तो ये आत्मविश्वास और बढ़ेगा और फिर वही है जिसको हम चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो महापुरुषों के जो ये विचार हैं वो आत्मसात होने से जो हैं हमें बल मिलता है। हम कहीं पर भी विचलित अगर हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो ये विश्वास है कि ये जो विचार है ये हमें फिर दोबारा से उस रास्ते पर लेकर आता है और हम कामयाबी के शिखर पर, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल इस विचार के साथ शुरुआत हो चुकी है आज के गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम की। आप बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आप हैं मेरे साथ यानी जगदीश के साथ।

सनम रईस फिल्म से ये गीत आपने सुना और इसमें आवाज़ें अमाल मलिक और साथियों की। फिलहाल अब हम आपको कार्यक्रम में जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम हर दिन की तरह दिन विशेष की बातें करेंगे और भी जानकारियों से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज का दिन 29 जून का और बहुत ही खास दिन अन्य दिनों की तरह 1888 में आज ही के दिन शास्त्रीय संगीत की जो है पहली रिकॉर्डिंग सामने आई। 1997 में विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में फ्रैंकफर्ट चेस क्लासिक टूर्नामेंट जीता था और 2005 में भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ था। और भी बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए हैं, लेकिन आप यूं ही बने रहें आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुनिए अगला ये गीत जो कि सनम रईस फिल्म से है और इसमें आवाज़ें अमान मलिक और साथियों की, और इससे पहला जो गीत आपने सुना वो अरिजीत सिंह के आवाज़ में सुना था।

0: अपाल मलिक और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना, और गीतों के साथ यूं ही आपका मनोरंजन होता रहेगा। और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। 29 जून की बात हम कर रहे थे। 1952 में पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। फिनलैंड की आदमी कुसेला ने जो है मिस यूनिवर्स 1952 का खिताब जीता था। 29 जून 2014 में साइना नेहवाल ने जो है ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती थी। और 29 जून 1861 को हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक देवकीनंदन खत्री का बिहार में जन्म हुआ। उन्होंने चंद्रकांता और नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर और भूतना जैसी रचनाएं की, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस उपन्यास ने सब पाठकों का मन मोहा।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है, और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: लीजिए अब अगला गीत आपको हम गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ जुबिन नौटियाल की है, लिखा है मनोज मुंतसर ने, जीत गांगुली का संगीत सुनिए।

जुबिन नौटियाल का गाया आपने ये गीत सुना और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आज के दिन बहुत सारे लोगों का जन्मदिन हो सकता है, शादी की सालगिरह हो सकती है और कोई विशेष मौका है, तो आप सबको आकाशवाणी एफएम शिमला की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ और उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल की जो सांख्यिकीय सलाहकार

के रूप में नियुक्त किया गया और उनका नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस। औद्योगिकी उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें नई नई योजनाएं बनाई। और भी आज से जुड़ी कुछ जानकारियां हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गीत से पहले हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और उनका नाम पीसी महालनोबिस। सांख्यिकी दिवस जो है आज के दिन को मनाया जाता है 29 जून को। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में पीसी महालनोबिस द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हर वर्ष उनके जन्म दिवस यानी आज 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत रखकर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और इस आशय की अधिसूचना दिनांक 5 जून 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। और ये दिवस राष्ट्रीय विकास में सरकारी सांख्यिकी के महत्व को जो है उजागर करने के लिए संगोष्ठियाँ, चर्चाएँ, प्रतियोगिता इसमें आज के दिन की जाती हैं। जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसकी पूर्ति जब होती है और उसके लिए जो संघर्ष हम करते हैं तो वो हमेशा याद किया जाता है और एक दिन के रूप में जो है वो एक यादगार सबके लिए बन जाता है। फिलहाल आप बने हुए आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लीजिए सुनिए राबता फिल्म का ये गीत आवाज़ आतिफ असलम की।

0: आतिफ असलम का गाया ये गीत आपने सुना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर गुड मॉर्निंग शिमला। हम आज के दिन की बात कर रहे थे और साथ ये बात भी आपसे करना चाहेंगे कि बारिशें शुरू हो चुकी हैं और हमें ऐसे में अपना ख्याल रखना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में सफ़र कर रहे हैं, निकल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह के क्षेत्र से आप गुज़र रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप अपनी यात्रा करें। अन्यथा कई बार हमें समस्या में जो है उलझना पड़ता है, दिक्कत आ जाती है। इसलिए ये आप ध्यान दें कि अनावश्यक कहीं पर भी आप भ्रमण ना करें और अच्छे से जो है जिस क्षेत्र से आप निकल रहे हैं वहाँ का मुआयना कर लें, फिर उससे आप जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमारे पास जैसे बरसातें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाती हैं, बारिश को लेकर तरह तरह की बीमारियां भी हम महसूस करते हैं, तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। शुरू से ही जिस तरह का जो है हिदायतें दी जाती हैं उसके हिसाब से हमें अपने आप को रखना है, क्योंकि हमें निरंतर अपने काम पर जुड़े रहना है और फिर उसमें अगर किसी तरह की मौसम के हिसाब से कोई दिक्कत आ जाए तो फिर परेशानी पूरे परिवार को हो जाती है। इसलिए हमें अपना ख्याल रखना है और उसके हिसाब से ही हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
0: लीजिए, अब कार्यक्रम में हम आपको अजहर फिल्म का ये गीत सुना रहे हैं। इसमें आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की है। मनोज यादव ने गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का। सुनिए।

अजहर फिल्म के इसी गीत के साथ अब गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारे नया फिल्म शिमला के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए आपको बता दें कि आज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम सुन सकते हैं। 8:45 पर आज आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में विषय रहेगा किशोर न्याय अधिनियम 2015। 9:00 हिंदी वार्ता आप सुनेंगे, संगीत का क्रमवद विकास इस वार्ता का विषय रहेगा। नमस्कार, 30 पर आप कुदरत के रंग कार्यक्रम को सुनते हैं और आज 10:00 आप सुनेगा मेल पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक मेल।

1:10 पर म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम आपके लिए रहता है और दिन में 2 बजे आप सब रंग कार्यक्रम सुनते हैं। 2:30 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुनते हैं शिखरों के स्वर।

0: कार्यक्रम म्यूजिक मेल। बस ये आज के मुख्य कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के लिए आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 7:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। 1 से 30 जुलाई तक प्रस्तावित किन्नौर कैलाश यात्रा अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। ये फैसला यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर, भारी चट्टान और लगातार बढ़ते भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लिया गया है। उपमंडल अधिकारी कल्पा एवं किन्नौर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार भारद्वाज ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले आदेशों तक यात्रा पर जाने का प्रयास न करें। माँ शूलिनी का राष्ट्रीय स्तरीय मेला गत रात्रि संपन्न हो गया। मेले के समापन समारोह में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। राज्यपाल ने मेलों की अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए बेहद लाभकारी बताया। शूलिनी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक जस्सी गिल के नाम रही। जस्सी गिल ने अपनी गायकी से खूब समा बांधा। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मंडी में बादल छाए हुए हैं, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है। 8 बजने वाले हैं थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली की इनसे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामना

0: शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन, महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति

0: से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जाट अधिकारियों ने लीक

0: के प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7 0112371 7 0116 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकाने

0: से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छह आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgulam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring

0: All the dailies have noticed the strengthening of India's maritime footprint in Seychelles with the Prime Minister's visit. PM Modi creates history with twin firsts, writes the Times of India. The first Indian PM to address Seychelles' National Assembly and the first to be honoured with the country's highest environmental honour. Lauding the support to austerity called by citizens, Prime Minister Modi backs self-reliance in aviation and defence sectors. Quoting the Prime Minister in his monthly radio programme Mann Ki Baat, the Asian Age writes, "From seas to skies, India is becoming secure." In a significant transformation, Army set to establish operationalized first integrated battle groups next month, headlines the Indian Express. Government to amend rules for speedy approvals for medical services, states Hindustan Times. The statesman says Northern Railway adds 2.2 megawatt rooftop solar capacity in April-May, accelerating green energy transition. The Economic Times headlines cites foreign outflows thin down on healthier queues as cooling crude. RBI's rupee support and easing rallies at Asian rivals boost confidence in Indian markets. The dailies have also noted the missing monsoon at the heat wave back in the national capital after 40 days, with the nights and days warmest in 2 years, feeling a 50 degree Celsius. And finally, in a first instance, Sanskrit University introduces BTech in AI and data science, providing opportunities to apply modern computational techniques to traditional domains such as Ayurveda, Yoga, Jyotish, Nyay and other classical disciplines, states the Hindu. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour, also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: पर आकाशवाणी एफ एम शिमला आप सुन रहे हैं 8:30 हुए हैं और अब सुनिए आप एफ एम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफ एम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। नगर निगम शिमला इसी सप्ताह शहर के करीब 35,000 से अधिक भवन मालिकों को संपत्ति कर का बिल जारी करेगा। पहली बार नगर निगम सभी रिकॉर्ड को केंद्रीय सॉफ्टवेयर पर अपडेट करने के बाद बिल डिजिटल तरीके से जनरेट करेगा। निगम का दावा है कि इससे टैक्स निर्धारण पर पारदर्शिता आएगी और वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर कर वसूली सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश रग्बी एसोसिएशन ने शनिवार को चौड़ा मैदान में अंडर 18 बालक एवं बालिका वर्ग की राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, हमीरपुर और मंडी के 68 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ी 5 से 10 जुलाई तक हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय अंडर 18 रग्बी चैंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। 30 जून से पांवटा साहिब में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। पिछले कल खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को आज व कल घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। धर्मशाला में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समान महत्व देना आवश्यक है ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से बिना पक्षपात के साथ सभी कार्य करने का आग्रह किया। वे सोलन जिले की ग्राम पंचायत डांगरी में भाजपा समर्थित प्रधानों और उपप्रधानों सहित बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। पर्यटन विभाग ने कांगड़ा जिला की विश्व प्रसिद्ध पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पौंग झील में इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: 8:32 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। और सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं मीरा भारद्वाज का गाया ये लोकगीत।

0: हिना शर्मा का गाया आपने लोकगीत सुना। फिलहाल लोक संगीत में इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये एफएम शिमला है। 8:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। विषय है किशोर न्याय अधिनियम 2015। श्रीमती शीतल शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला से भेंट कर रहे हैं गरेंद्र सिंह ठाकुर।
1: कानून की बात के आज के अंक में सभी श्रोताओं को मेरा यानी गिरेंद्र सिंह ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में हम कानून की अनेक विधाओं के बारे में बात करते हैं, तो आज हम ऐसी ही एक कानून विधा के बारे में बात करेंगे जिसका विषय है किशोर न्याय अधिनियम 2015। और इस विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु आकाशवाणी के स्टूडियोज में मौजूद हैं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शीतल शर्मा। तो शीतल जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस प्रकार का अधिनियम है और इसका मुख्य उद्देश्य एवं मूल भावना किस प्रकार की है, क्या है?
2: किशोर न्याय अधिनियम, जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है
1: जी।
2: इसकी मूल भावना ये है कि 18 वर्ष से कम आयु के उन सभी व्यक्तियों पर ये लागू होती है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है या जो कानून का उल्लंघन करते हैं
1: जी। तो इस अधिनियम के अनुसार जो है कानून से संघर्षरत बालक किसे कहा जाता है, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे?
2: अधिनियम के अनुसार जो कानून से संघर्षित बालक है उसको हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी कहते हैं। उसका अर्थ है उस बच्चे से जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया हो या जिसपे किसी अपराध करने का आरोप हो, लेकिन इसमें 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक शामिल है
1: जी। तो मैम, अब प्रश्न उठता है कि व्यस्क अपराधियों की तुलना में जो है किशोरों के मामले की सुनवाई की प्रक्रिया जो है किस प्रकार भिन्न रहती है?
2: देखिए, जब हम व्यस्क की बात करते हैं तो उनको जब अरेस्ट करते हैं तो उनके राइट्स डिफरेंट होते हैं। अरेस्ट करने के बाद में उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन जो किशोरों के मामले होते हैं उसमें जो सुनवाई होती है वो एक विशेष प्राधिकरण करता है जिसको हम किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है,

0: वयस्कों के विपरीत किशोरों को जो पुलिस है वो लॉकअप या जेल में नहीं रख सकती है, और प्रक्रिया पुनर्वास उन्मुख होती है, यानी कि उनकी जो प्रोसेस होती है वो रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें किशोर की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर विचार किया जाता है, बोर्ड विचार करता है इसमें, और उन्हें या तो माता पिता के संरक्षण की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, ना कि नियमित जेल में रखा जाता है।
1: जी, इस अधिनियम में जो है किन किन मूलभूत सिद्धांतों को विशेष महत्ता दी गई है?
0: इस अधिनियम में बच्चों के सर्वोत्तम हित यानी कि बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, उनकी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनसे गैर भेदभाव यानी कि इक्वालिटी के साथ, और अन्य बाल केंद्रित सिद्धांतों को महत्व दिया गया है।
1: जी.
0: इसमें जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब कि जब तक आपने आपको गिल्टी नहीं ठहरा दिया जाता है तब तक हम लोग मानते हैं कि आपने किसी तरह का कोई भी अपराध नहीं किया है, पहले इनका प्रिंसिपल है। दूसरा होता है कि उनकी डिग्निटी और वर्थ को मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन है, उनका बेस्ट इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद में उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान दिया जाता है, उनको पॉजिटिव मेजर के बारे में ध्यान दिया जाता है।
1: जी, तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसमें जो है बच्चे की जो है वैचारिक क्षमता, उसी प्रकार की उसकी भावनाएं आहत ना हो,
0: सर्वोत्तम हित और उसकी गरिमा को ध्यान में रख,
1: तो इन बातों पर जो है गौर किया जाता है ताकि जो है आने वाले समय में एक अच्छा नागरिक
0: अच्छा नागरिक बने।
1: जी, तो शीतल जी, यदि किसी नाबालिग पर अपराध का आरोप लगता है तो प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है?
0: प्रारंभिक प्रक्रिया में किशोर को पकड़ने पर उसे 24 घंटे के भीतर किशोर को न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना शामिल है। पुलिस उन्हें हवालात में नहीं रख सकती है। मामले की गंभीरता के आधार पर बोर्ड उन्हें जमानत पर छोड़ सकता है या एक परिवीक्षा अधिकारी जिसको प्रोबेशन ऑफिसर भी कहते हैं कि देखरेख में रख सकता है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है। मतलब उनको किसी भी हालात में किसी भी हवालात में नहीं रखा जाता है।
1: जी, तो शीतल जी, जैसे महिलाओं के उत्थान हेतु अनेक बोर्ड एवं संस्थाएं बनी होती हैं, तो क्या किशोरों के उत्थान हेतु भी कोई इस प्रकार का बोर्ड बना होता है? यदि हाँ तो किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका क्या है और किस प्रकार की रहती है?
0: किशोर न्याय बोर्ड जिसको कि हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, कानून से संघर्षित बच्चे जिनको हम कहते हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, से संबंधित मामलों को संभालने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है। बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करता है और बच्चे के संबंध में उचित आदेश पारित करता है।
1: जी, आपने मैम एक शब्द का उपयोग किया, संघर्षरत बालक, तो क्या कानून में संघर्षरत बालक को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है? यदि हाँ तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो है अधिकार इसका है और इसको पूरा किया जाए?
0: जी हाँ, कानून से संघर्षित बच्चे यानी कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो भी होते हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार बनाया गया है। उनको विधिक सहायता जो है वो कानून सहायता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको कहते हैं मिलती है, विशेषकर यदि वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के मानदंडों को पूरा करता है। फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये सुरक्षित करने में मदद करते हैं कि बच्चों को कानूनी सहायता दी जाए।
1: जैसा आपने मैम बताया कि किशोरों को जो है पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो ऐसे में जो उनको कहाँ रखा जाता है? कोई बाल सुधार गृह में रख सकते हैं या कोई और सुधार गृह होता है?
0: किसी भी किशोर या बालक को उनको पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, ना ही उसे जेल भेजा जा सकता है। उन्हें किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो उनके समक्ष जब उनको भेजा जाता है, लेकर जाते हैं, तो वो उनको एक सुरक्षित स्थान जैसे पर्यवेक्षण गृह यानी कि ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है।
1: शीतल जी, पूछताछ के दौरान जो है बालक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रावधान है?
0: बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है कि एक तो उन्हें जेल या लॉकअप में ना रखा जाए और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उन्हें कानून सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी, तो शीतल जी, 16 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के संबंध में अधिनियम में क्या कुछ विशेष प्रावधान है? इसमें कोई विशेष छूट दी जाती है?
0: विशेष छूट तो नहीं दी जाती उनको।
1: जी,
0: जो अधिनियम में क्या है, क्योंकि ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं वो इसमें कवर होते हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया है। अब जो जघन्य अपराध जिनको आप हीनियस क्राइम कहते हैं।

0: हैं इस समय ये विचार हो रहा है कि 16 से जो 18 वर्ष के जो बच्चे की एज है उस समय जो अपराध हो रहे हैं उनसे वो बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि 16 से 18 वर्ष की एक कैटेगरी एक बना दी गई है इसी एक्ट के अंदर, जिसमें उनके ऊपर वयस्कों मतलब कि अडल्ट के समान मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, और ये अनुमति जो है वो बोर्ड देता है, जुवेनाइल
1: जी
0: जस्टिस बोर्ड देता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं 16 से 18 साल के जो केसेस जिसमें कि बच्चों ने कोई जघन्य अपराध यानी कि हीनियस क्राइम किया होता है, तो वो न्याय बोर्ड एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है।
1: जी तो मैम, ऐसे मामलों में यह तय करने के लिए किन किन पहलुओं पर विचार किया जाता है कि बालक परीक्षण वयस्क के रूप में होगा या नहीं?
0: ये तय करने के लिए एक तो पहले बच्चे का परीक्षण होता है यानी कि उसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, उसमें उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, फिर उसके अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता, और फिर उन परिस्थितियों का प्रारंभिक मूल्यांकन करना होता है कि जिनमें उसने उस तरह का अपराध किया था।
1: तो शीतल जी, प्रारंभिक आकलन यानी प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है कौन करता है बता?
0: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है।
1: तो मैम, क्या इस प्रावधान को लेकर न्यायपालिका या समाज में कोई कानूनी या नैतिक बहस या भिन्नता है?
0: हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या है, 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने के प्रावधान को लेकर इस समय न्यायपालिका और समाज में कानूनी और नैतिक बहस चल रही है।
1: जी
0: कानून में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हमारे इस कानून में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसमें पनिशमेंट नहीं है। तो इसमें अगर बच्चे को अपराध सिद्ध भी हो जाता है तब भी उसको 3 साल के लिए करेक्शन होम में रखा जाता है। तो अब जो जैसे हमारे जो लीगल लोग हैं वो कहते हैं कि
1: जी
0: सजा होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, प्राथमिकी जो हम करते हैं, तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, प्रिलिमिनरी असेसमेंट में बच्चे की मानसिक स्थिति और उसकी शारीरिक क्षमता के बारे में असेसमेंट होती है। अब
1: जी
0: ये किसी किसी केस में होती है। अब जब हम बच्चे की क्षमता देखते हैं, मानसिक क्षमता देखते हैं यानी कि उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, तो जो सोशल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटी वो ये कहती है कि बच्चा बहुत छोटा है, उसका इस तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं हो सकता है।
1: जी
0: और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब कुछ बच्चों को तो 16 से 18 वाले बच्चों को तो हम भेज देते हैं उसमें चिल्ड्रन कोर्ट में उनकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके, और कुछ बच्चों को हम फिर भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही ट्राई करते हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों अभी इसमें थोड़ी सी बहस चल रही है कि
1: जी
0: इसको
1: यानी
0: किस
1: कि
0: तरह
1: इसमें जो
0: से करना
1: एकमत नहीं
0: चाहिए।
1: है कहीं ना
0: एक
1: कहीं।
0: मत नहीं है अभी
1: जी,
0: इसमें।
1: कानून से संघर्षरत बालकों के पुनर्वास के लिए कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं? क्योंकि जब कोई एक तरह के कृत्य करता है तो उसमें जो है समाज जो है उसका कहीं ना कहीं दूरी बनाता है, तो या कहीं ना कहीं तो बहिष्कार करता है, तो ऐसे में जो है उनके लिए जो है किस प्रकार के जो है सुविधाएं दी जाती हैं?
0: इस एक्ट को कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस फिर ब्रैकेट में केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है ये, ठीक है।
1: जी
0: इसमें हम बच्चों की केयर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमने किसी तरह का उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं, किस तरह से उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। अब पुनर्वास के उपायों में संस्थागत सेवाएं हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, जैसे पर्यवेक्षण होम, ऑब्जर्वेशन होम और विशेष गृह स्पेशल होम, और गैर संस्थान यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सेवाएं जैसे गोद लेना, आर्थिक संरक्षण और पालन पोषण शामिल है। इसमें शिक्षा, परामर्श, व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
1: जी तो मैम, जो हमारे पर्यवेक्षण गृह या जो है स्पेशल होम है, विशेष गृह है, उनकी क्या भूमिका रहती है पुनर्वास में?
0: जो पर्यवेक्षण गृह है उन किशोरों को अस्थायी रूप से समायोजित यानी कि वेल एडजस्ट करने के लिए जो कानून के साथ संघर्ष में है और जिनके मामले कोर्ट में अभी चल रहे हैं यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहे हैं।
1: जी
0: विशेष गृह में क्या होता है, वो बच्चों को सुरक्षात्मक सेवाएं जैसे शिक्षा, परामर्श और कौशल विकास प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं ताकि वे समाज में फिर से एकीकृत हो सके, मतलब समाज में वापस जाके अपना वही काम कर
1: यानी कि
0: सके,
1: समाज का जो है एक अभिन्न अंग बन
0: हिस्सा बन
1: सके।
0: सके। हाँ जी
1: जी तो शीतल जी, काउंसलिंग यानी परामर्श और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो है इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ती है? किस प्रकार इनकी काउंसलिंग की जाती है? किस प्रकार से परामर्श दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है?
0: ये जो बच्चे होते हैं इनको क्योंकि केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो परामर्श यानी कि काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन यानी कि साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चों को जिम्मेदारी स्वीकार करना, अपराध के मूल कारणों को समझने और भविष्य में

0: प्रार्थना करने की मदद करते हैं।
1: शीतल जी, आपके अनुभव में किन सामाजिक कारणों से बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि आपने भी इतनी लंबे समय से कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार के जो है इसमें जो है सामाजिक कारण रहते हैं।
0: सामाजिक कारणों में एक तो नगरीकरण, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, उससे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और औद्योगिकरण के कारण परिवारों का बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल हो जाना होता है, और वो खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति में शामिल हो जाते हैं। यानी कि आपके जो परिवार का एक कंट्रोल है, वो हमारे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है, जब से अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हुई है। फिर दूसरा कारण इसमें मैं समझती हूँ ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो गरीबी और कम शिक्षा है, उसकी वजह से भी कुछ बच्चे इस तरह से जुवेनाइल उसमें चले जाते हैं।
1: जी, अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे कि समाज के लिए आपका क्या संदेश है, विशेषकर उन बच्चों के संदर्भ में जो कानून से संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं इस किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत।
0: समाज को इन बच्चों को अपराधी की बजाय देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में देखना चाहिए। सभी हितधारकों को उनके पुनर्वास और समाज में पुनः वापस एकीकरण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षा, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट और सहानुभूति सिंपथी प्रदान करनी चाहिए।
1: जी, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समाज को जो है ऐसे जो किशोर हैं जो अपने राह से भटक गए थे, उनको जो है सही मुकाम पर लाने के लिए, समाज का अंग बनाने के लिए जो है समाज, माता पिता और समाज के सभी वर्गों को जो है सहयोग देना होगा। तो शीतल जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, विषय था किशोर न्याय अधिनियम 2015। श्रीमती शीतल शर्मा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला से बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र सिंह ठाकुर। आकाशवाणी 103.7 MHz पर FM शिमला है, 9 बज चुके हैं और अब आपको हम सुना रहे हैं हिंदी वार्ता, जिसका विषय है संगीत का क्रमवद विकास। वार्ताकार हैं चित्रंजन भारती। सुनिए ये हिंदी वार्ता।
3: गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो बिना शब्द के प्राप्त हो सके। संगीत ब्रह्मा कहा जाता है। शब्द ही इस लोक और परलोक का आधार है। पंचभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म है और आकाश का गुण नाद है। यही नाद इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। संगीत का आधार ही नाद है। नाद दो प्रकार के माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, संगीत की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस संदर्भ में कोई वैज्ञानिक आधार तो मिलता नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है और 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन काल, 800 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल और 1800 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश काल और 1947 से वर्तमान तक आधुनिक काल माना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम वैदिक काल की। वैदिक युग में संगीत समाज में स्थान बना चुका था। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन संगीत को बताया गया है। अनेक वाद्यों का आविष्कार भी ऋग्वेद के समय में बताया जाता है। यजुर्वेद में संगीत को अनेक लोगों की आजीविका का साधन बताया गया है। फिर गान प्रधान वेद साम वेद आया, जिसे संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। साम वेद में उच्चारण की दृष्टि से 3 और संगीत की दृष्टि से 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख है। साम का गायन मेसोपोटामिया, फेल्डिया, सुमेर, बवेरू, असुर, सुर, यरूशलम, ईरान, अरब, फिनिशिया और मिस्र के धार्मिक संगीत से पर्याप्त मात्रा में मिलता जुलता था। उत्तर वैदिक काल के रामायण ग्रंथ में भेरी, दुंदुभी, वीणा, मृदंग और घड़ा आदि वाद्य यंत्रों और भंवरों के गायन का वर्णन मिलता है। तो महाभारत में कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव से सभी प्रभावित होते हैं। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने उत्तरा को संगीत नृत्य सिखाने हेतु बृहन्नला का रूप धारण किया था। पौराणिक काल के तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण के अलावा याग वल्क्य रत्न प्रदीपिका, प्रतिभा भाष्य प्रदीप,

और नारदीय शिक्षा जैसे ग्रंथों से भी हमें उस समय के संगीत का परिचय मिलता है। चौथी शताब्दी में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों से भी हमें संगीत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें विभिन्न वाद्यों का वर्णन, उनकी उत्पत्ति, उन्हें बजाने के तरीकों, स्वर, छंद, लय और संगीत पर चर्चा मिलती है। उस दौर के राजा महाराजा भी संगीत कला के प्रेमी थे और दूसरे संगीतज्ञों को आश्रय देकर उनकी कला को निखारने संवारने में मदद करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे महाकाव्य काल में संगीत की, जो प्राचीन काल भी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में भेरी

चर्चा मिलती है। उस दौर के राजा महाराजा भी संगीत कला के प्रेमी थे और दूसरे संगीतज्ञों को आश्रय देकर उनकी कला को निखारने संवारने में मदद करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे महाकाव्य काल में संगीत की, जो प्राचीन काल भी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में भेरी, दुदुभि, मृदंग, पटह, घट, पणव, डिम डिम, आडंबर, वीणा इत्यादि वाद्यों और जाति गायन का उल्लेख मिलता है। जाति राग का आदि रूप है। महाभारत में सप्त स्वरों और गांधार ग्राम का उल्लेख आता है। महाजनक जातक में चार परम महाशब्दों का उल्लेख है। इन्हें राजा उपाधि रूप में विद्वान को प्रदान करता था। दक्षिण के एक बौद्ध नाटक सिलपडिगारन में भी कुछ संगीत विषय बातों का समावेश है। इसमें वीणा, याल, बांसुरी, पटह वाद्यों का जिक्र है। उस समय के प्रचलित रागों का भी इसमें उल्लेख है। उसी समय के तिवाकरम नामक एक जैन कोश में भी संगीत के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। प्राचीन काल में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारतीय संगीत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है वह है भरत का नाट्य शास्त्र। भरत के काल के विषय में विवाद है। यह एक संग्रह ग्रंथ है, इसलिए इसके काल का निर्णय करना कठिन हो गया है। विद्वान लोग इसका काल लगभग 500 से 400 ईस्वी तक मानते हैं। नाट्य शास्त्र में श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति और ताल का विशुद्ध विवेचन किया गया है। भरत ने श्रुतियों का विचार स्वर की स्थापना के लिए किया है। उन्होंने चार श्रुतियों के अंतराल पर षड्ज रखा है, उसके अनंतर तीन श्रुतियों के अंतराल पर ऋषभ, दो श्रुतियों के अंतराल पर गांधार, चार श्रुतियों के अंतराल पर मध्यम, फिर चार श्रुतियों के अंतराल पर पंचम, तीन श्रुतियों के अंतराल पर धैवत और दो श्रुतियों के अंतराल पर निषाद रखा है। तत्पश्चात मध्यकाल में 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में उत्तरी भारत संगीत पर ईरानी संगीत का प्रभाव पड़ने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो संगीत के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कवाली मान का प्रचार किया। कहा जाता है सितार वाद्य का भी निर्माण इन्हीं ने किया, किंतु सहतार वाद्य ईरान में पहले से वर्तमान था। हो सकता है इसका कुछ रूपांतर करके उन्होंने इसे भारत में प्रोत्साहन दिया हो। कहा जाता है तबला भी इन्हीं के निर्माण का बनाया हुआ है। ख्याल गायकी का भी आरंभ इन्होंने ही किया है। इन्होंने ईरानी धुनों का मिश्रण करके कुछ नए राग भी बनाए। जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शर्की केसमय मलिक सुल्तान कड़ा के अधिपति थे। इनके पुत्र बहादुर मलिक संगीत के बहुत प्रेमी थे। इन्होंने प्राय संगीत ग्रंथों को एकत्र किया और सारे भारत से संगीत के विद्वानों को आमंत्रित किया। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुवपद शैली के गायन का विकास किया। संभवतः नायक बैजू इनके दरबार में थे। इन्होंने हिंदी में मान कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की है। संगीत पर हिंदी में कदाचित यह पहला ग्रंथ है। इसमें उस समय के रागों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। मुगल बादशाहों में अकबर ने संगीत को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया। इस काल में वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत के बहुत प्रख्यात आचार्य थे। कहा जाता है तानसेन ने संगीत में शिक्षा पाई थी। इन्होंने सैकड़ों ध्रुवपद और धमार की रचना की। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी इत्यादि वैष्णव कवियों ने विष्णु पद की रचना की, जो मंदिरों में गाए जाते थे। ये छंद में आबद्ध थे, किंतु ध्रुवपद की शैली में गाए जाते थे। तानसेन पहले रीवा के महाराज रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। अकबर ने उन्हें वहां से बुलाकर अपना दरबारी गायक नियुक्त किया। तानसेन की प्रचलित गायन पद्धति का ज्ञान तो था, वह प्राचीन संगीत पद्धति से भी परिचित थे। इन्होंने दरबारी कानड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार रागों का निर्माण किया। वह अनुपम गायक थे। उनके वंशजों ने ध्रुवपद धमार की गायकी और वीणा और रबाब वादन को 20वीं शती तक जीवित रखा। 16वीं सती में पुंडरिक विठल संगीत शास्त्र के अच्छे विद्वान हुए हैं। वह कर्नाटक के शिवगंगा नामक गांव में पैदा हुए थे, किंतु उनका अधिक समय बीता खानदेश प्रांत के बुरहानपुर नगर में। जब अकबर ने खानदेश को 1599 में जीत लिया तो संभवतः वह दिल्ली आए। वह उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत दोनों के पंडित थे। उनके लेख से ऐसा जान पड़ता है कि बुरहान खान ने उन्हें दोनों के समन्वय का आदेश दिया था। उन्होंने सद्राग चंद्रोदय, रामामात्य,

मंजरी और नर्तन निर्णय नाम के चार ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथों में स्वयंभू स्वर का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में भारतीय संगीत की प्रकृति में बदलाव आया। इस समय भारतीय संगीत धीरे धीरे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के दो अलग अलग रूपों में बंटने लगा। 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास ही संगीत की इस दो परंपराओं का प्रचलन शुरू हुआ। फारसी प्रभाव ने भारतीय संगीत की उत्तरी शैली में पर्याप्त बदलाव लाया। 15वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति ध्रुपद या शास्त्रीय रूप में गायन में बदल गया। 18वीं शताब्दी ईस्वी में गायन के एक नए रूप के रूप में ख्याल का विकास हुआ। कर्नाटक शास्त्रीय या कृति मुख्य रूप से साहित्य और गीत संबंधी है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत संरचना पर जोर देता है। हिंदुस्तानी संगीत ने प्राकृतिक स्वरों के या सप्तक के पैमाने को अपनाया, जबकि कर्नाटक संगीत पारंपरिक सप्तक की शैली को बरकरार रखता है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों ही महान आत्मसात शक्ति को व्यक्त करते हैं। लोक धुनों और क्षेत्रीय विशेषताओं को अवशोषित करने के साथ साथ इनमें से कई धुनों को रागों की स्थिति तक बढ़ाते हैं। इस प्रकार संगीत की इन दो प्रणालियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इसके पश्चात आधुनिक काल के संगीत की बात करेंगे हम। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ संगीत कला में गिरावट आई। चूंकि अधिकांश नवाबों और महाअनुभावों के पास जब अपना धन नहीं बचा था और कलाकारों पर जोर देने के लिए पुरस्कार नहीं थे, इसलिए अधिकांश संगीतकारों को अन्य व्यवसायों में जाना पड़ा। कुछ गृहिणियों ने हालांकि समय की बर्बादी से बचने के लिए प्रबंधन किया और स्वतंत्रता के बाद मजबूत बनी रही। कुल मिलाकर भारतीय संगीत ने इस कला को बनाए रखने के लिए एक बैकसीट और रुचि और संसाधनों का सहारा लिया। इस समय धीरे धीरे बनने लगा एक समानांतर विकास यह था कि मीडिया के नए रूप अब तेजी से आधुनिक हो रहे देश में उभर रहे थे। जैसे कि कहा जाता है, लोकप्रिय संगीत या पॉप संगीत का प्रसार तेजी से देखा गया और सिनेमा के प्रसार के साथ यह प्रवृत्ति बढ़ती गई। 60 के दशक में शास्त्रीय संगीत को भी देश से बाहर निर्यात किया जाने लगा और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को भारतीय शास्त्रीय रूप में संयोजित करने का एक प्रयोग किया गया। इसे लोकप्रिय रूप में फ्यूजन संगीत के रूप में जाना जाता है। 70 और 80 के दशक में डिस्को और पॉप संगीत ने धमाकेदार भारतीय संगीत दृश्य में प्रवेश किया। 90 के दशक ने भारतीय दर्शकों के बीच पॉप प्रवृत्ति को लोकप्रिय बनाया। सूचना प्रौद्योगिकी के और अधिक प्रसार और तेजी से वैश्विक दुनिया के साथ हम समकालीन भारत में मौजूद संगीत रूपों के एक मेजबान को देखते हैं। रॉक संगीत, R&B, हिप पॉप, जैज आदि संगीत के इन पश्चिमी रूपों के अलावा पारंपरिक रूप भारतीय संगीत जैसे कि ख्याल, गजल, गीत, ठुमरी, कव्वाली आदि को भी समकालीन संगीत परिदृश्य में जगह मिलती है। भजन और कीर्तन जो धार्मिक गीतों के एक अलग धारा बनाते हैं, देश में भी व्यापक रूप से गाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा संगीत समय के लगातार प्रभाव से बदलता रहा। अंततः लोक संगीत हमारे भारत में हर जगह प्रचलित है। भारत में लोक संगीत ने युगों से एक लंबी और निरंतर यात्रा देखी है। यह प्राचीन काल से ही आसपास रहा है और आधुनिक समय तक इसका अस्तित्व बना रहा। भारत में पढ़े लिखे पंडितों की सैद्धांतिक लेखनी लोकगीतों में लोक जीवन के ऐतिहासिक वृत्तांतों को याद करने की मौखिक परंपरा से बहुत अलग नहीं है। महाभारत और रामायण दो महान भारतीय महाकाव्यों की रचना आर्यभारत के शुरुआती सदियों में मौखिक रूप से की गई थी। वे बहुसंख्यक आबादी के लिए इस रूप में मौजूद रहते हैं। नाटक, नृत्य और गीत के विभिन्न रूपों में उनके साथ रहते हैं। कई सांस्कृतिक विचारों, वीर आदर्शों और दैनिक जीवन के पैटर्न को इन महाकाव्यों के माध्यम से प्रवलित किया जाता है। भाग में यह घनिष्ठ संबंध के कारण होता है जो कि शिखा और अनियंत्रित के बीच मौजूद होता है। अदालतें, शिक्षा के केंद्र और पंडितों के निवास हमेशा गांवों, शहरों और कस्बों के करीब रहे हैं। संगीत पंडित और आबादी मिलकर श्रद्धा करते हैं, परंपरा का सम्मान करते हैं। भारत में वाद्य यंत्रों में भी बहुत प्राचीनता है और इसे एक दिव्य उत्पन्न

0: सखी भी कहा जा सकता है। अधिकांश देवी देवताओं को एक यंत्र से दर्शाया गया है, जैसे भगवान गणेश शंख धारण करते हैं, भगवान विष्णु डमरू धारण करते हैं और भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। महाभारत और रामायण के शास्त्रीय ग्रंथों में कई संगीत वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख है। कई कुशल संगीतकारों ने कहा था कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, रामायण में वीणा, दुंदुभी, मृदंगम, भेरी, घड़ा, पनवा, पटाह, डिमडिमा जैसे उपकरणों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संगीत वाद्य यंत्रों ने स्वयं एक लंबा इतिहास देखा है। भारत के संगीत में प्रयुक्त पारंपरिक वाद्य यंत्रों में सारंगी, वीणा, मृदंगम, सितार, तंबूरा, नादस्वरम, शहनाई, बांसुरी, घटम ये शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय संगीत का इतिहास भारत में बदलती कर्म कांड की यात्रा की समृद्ध गाथा का बखान करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह FM शिमला है। आप बने हुए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अगर आप उस जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
3: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
2: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।

9:15 हुए हैं। आइए आपको बता दें कि आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर आप कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम आज सुन सकते हैं।

9:30 पर आप सुरबेला कार्यक्रम हर दिन सुनते हैं। आज आप सुनिएगा भीमसेन जोशी का गायन राग रामकली आप सुनेंगे। 10:00 आप सबको इंतज़ार रहता है रिमझिम कार्यक्रम का, और 11:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

1:10 पर फौजी भाई सुनते हैं अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और 2 बजे आप सुनेंगे सुनहरी किरणें कार्यक्रम, जिसमें आज विषय रहेगा श्वेत बटन मशरूम की खेती।

2:30 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम हिमगुंजन आप सुनते हैं और 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं, जिसमें विषय रहेगा सुभाष पालेकर, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत।

8 बजे धारावी गीत कार्यक्रम आप सुनते हैं, जिसमें लोक संगीत का आनंद आप लेते हैं, जिसमें आज आप सुनेंगे मोतीलाल सरेख, पिंकी, बंसी भारद्वाज, लेखराम पाल और मदन गौतम के गाए लोकगीत।

8:30 पर आप सुगम संगीत सुनते हैं, जिसमें आज आप सुनिएगा नवदीप कौर दहल का। 9:15 पर गजलों

यह है आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी 103.7 MHz पर एफएम शिमला है। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वेराइटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई किया और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात

0: रहे, जिसने भारत और सेशल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपये तक बिका है। शिमला जिले के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुंच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपाती, पलम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागू में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि पदेन पार्षद होने के नाते धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष बुटेल, जो नगर निगम के पदेन पार्षद हैं, को भी शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उप महापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। देशभर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेला कल संपन्न हो गया। सोलन की अधिष्ठात्री देवी माँ शूलिनी बड़ी बहन माँ दुर्गा से मिलने के बाद मूल स्थान पर लौट गईं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समापन समारोह में शिरकत की। गंज बाजार से लेकर माता के मंदिर तक लोगों ने जगह जगह पर फूलों की बारिश की और पूरा शहर माँ के जयकारों से गूंज उठा। स्पीति घाटी की 17 वर्षीय तंजिन नॉर्डन ने 5,970 मीटर ऊंची कनीमो पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर नया इतिहास रचा है। रिपोर्ट के अनुसार वह इस शिखर पर तिरंगा फहराने वाली स्पीति घाटी की पहली महिला बन गई हैं। कनामो या कनीमो पीक काजा और किब्बर गांव के पास स्थित हिमालय की एक प्रसिद्ध चोटी है। यह अपनी ऊंचाई, कठिन मौसम और कम ऑक्सीजन के कारण ट्रैकर्स के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। सिरमौर जिला के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के लिए आयुष विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट मददगार साबित हो रही है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच, उपचार और ज़रूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं। इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। अधिक जानकारी हमारे सिरमौर जिला संवाददाता से।
2: इन शिविरों में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और आयुष पद्धति से उपचार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जरूरी टेस्ट भी मौके पर ही किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए विभाग की ओर से अलग बजट उपलब्ध करवाया जाता है। शिविरों के बाद मरीजों की स्थिति पर नजर रखने के लिए फॉलोअप कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। ज़रूरतमंद बच्चों पर विशेष नज़र रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाएगी।

0: चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 जून से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ में 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
1: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना बिलासपुर जिलों में बीती रात रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने एक दो दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुक्खू बोले बड़ा बंगाल को बनाएंगे प्राकृतिक पंचायत, सड़क के लिए दिए 10 करोड़। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, सुक्खू ने बड़ा बंगाल में रचा इतिहास, दुर्गम क्षेत्र में रात बिताने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तीर्थ यात्रा से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है, भूस्खलन का खतरा, श्रीखंड के बाद किन्नौर कैलाश यात्रा भी स्थगित। हिमाचल दस्तक की खबर है, बल्क ड्रग पार्क में 700 बीघा जमीन पर अभी तक नहीं हुई पेड़ों की गिनती। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, प्रदेश में 1 जुलाई को मानसून की दस्तक संभव, 1 से 4 तक भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। सेब की अर्ली वैरायटी टाइडमैन पहुंची फल मंडी, बागवानों को मिल रहे अच्छे दाम। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए किया क्वालिफाई। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में झमाझम बरस रहे मेघ, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान। पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। इस FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। 9:30 हुए हैं और अब आपको हम सुना रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कांगड़ा की ओर लेकर चलते हैं। वहाँ के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में जाना जाता है। यहाँ के पर्यटक स्थल अपने आप में अद्भुत है, और जब सैलानी इन स्थलों पर पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर जो महसूस करते हैं वो उनकी उम्मीदों से भी ऊपर रहता है। तो इसलिए कुछ ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद ले सकते हैं। फिलहाल इस गीत के साथ शुरुआत कर रहे हैं, आप यूं ही बने रहे FM शिमला के साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है कुदरत के रंग।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने ये गीत सुना और कुदरत के रंग कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। हम कांगड़ा ज़िले की बात कर रहे थे कि कौन कौन से वो पर्यटक स्थल हैं जहां पर आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर जब हिमाचल पर आते हैं, देवभूमि हिमाचल है, यहां पर हमारे जो ऐतिहासिक मंदिर हैं वो भी अनूठे एक अपने इतिहास को लेकर सबके लिए जो है एक आकर्षण का केंद्र हैं। मसरूर शैल मंदिर की बात करें तो यहाँ होशियारपुर कांगड़ा मार्ग पर एक जगह आती है रानीताल, वहाँ से सीधे सड़क कांगड़ा चली जाती है जो वहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, और रानीताल से एक सड़क लुंज की तरफ जाती है जो मसरूर मंदिर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर आप जब पहुँच जाएंगे तो ये रास्ता सीधे सीधे इस मंदिर की ओर आपको लेकर निकलेगा, लेकिन जाते जाते जो आपको यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य की छटा मिलेगी और

यहाँ से आपको एक तरह से जो है इन मंदिरों का आभास होना शुरू हो जाएगा। और लुंज की तरफ जब आप निकलते हैं, बाण गंगा नदी पर बना हुआ खूबसूरत पुल आता है और रानीताल से लुंज तक रास्ता आपको बिल्कुल ग्रामीण हिमाचल प्रदेश के दर्शन करवाएगा। और आप मसरूर जाने के लिए पठानकोट मंडी हाईवे से भी जा सकते हैं, और हाईवे से एक छोटी रोड लुंज तक जाती है और लुंज से ही एक सड़क गग्गल तक जाती है, जहाँ कांगड़ा घाटी का खूबसूरत एयरपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण दर्शन करते हुए जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि ये गांव बेशक गांव हैं लेकिन पूरी सुविधाओं से लैस हैं। और यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ का रखरखाव है। और जैसे ही आप इस मंदिर तक पहुँचते हैं तो वहाँ की शैली से भी आप वाकिफ हो जाएंगे कि किस तरह से यहाँ ये इस कहा जाता है कि इसे पांडवों द्वारा बनाया गया और कांगड़ा घाटी में काफ़ी समय उन्होंने लगाया। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ है। मसरूर शैल मंदिर की रचना महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा की संरचना से मिलती है। कई बार इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप अनुभव करेंगे कि बहुत बहुत अद्भुत जो स्थल यहाँ पर हैं जिनका दर्शन आप हिमाचल पहुँच कर करते हैं। इसके बाद अगर अब हम कांगड़ा किला की बात करें तो ये कांगड़ा का नगीना माना जाता है। धर्मशाला से 28 किलोमीटर और कांगड़ा शहर से 3 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक और खूबसूरत किला, जो नदियों बाणगंगा और माझी नदी के संगम के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और यहाँ की ये शान है। और जब आप इस भव्य स्थल पर पहुँचते हैं तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि किस तरह से जो है इसकी संरचना की गई है, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत उसमें भी जो है शामिल करने के लिए प्रयास इसको किए गए हैं। और किले के गेट के बाहर एक छोटा सा ऑफिस भी बना हुआ है। और आप देखेंगे कि जब इन स्थलों पर आप पहुंचते हैं तो उनकी जो भी शैली है, वहां का जो रखरखाव है, वो अपने आप में कुछ ना कुछ इतिहास को बयां कर रहा है।

दबंग फिल्म का ये गीत आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की ओर जो हैं सैर कर रहे हैं, वहाँ के जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर पहुँचे हैं। बैजनाथ मंदिर की बात करें तो बहुत ही ऐतिहासिक ये स्थल पालमपुर से 16 किलोमीटर दूर है, और यहाँ बैजनाथ कांगड़ा ज़िला का एक खूबसूरत कस्बा है, और यहाँ जो शिव मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वर्ष भर जो है सैलानियों का तांता, श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहता है, और यहाँ दूर दूर से जब लोग पहुँचते हैं तो वो अद्भुत यहाँ की जो नागर शैली से में बना ये मंदिर है, इसका दर्शन उनको जो है मंत्रमुग्ध कर देता है। और जब यहाँ इस तरह की ऐतिहासिकता उनको मालूम होती है कि कैसे समय में जो है इसको बनाया गया है, मशहूर राजा संसार चंद ने भी इसका निर्माण करवाया, तो इस तरह से जब इसकी ऐतिहासिकता उनको सैलानियों को मालूम होती है तो उन्हें लगता है कि कैसे इन दुर्गम क्षेत्रों में जो है इस तरह की व्यवस्था की गई होगी, और आस्था के ये अपार केंद्र बन गए हैं।

कांगड़ा जिले के पर्यटक स्थलों के बारे में हम जान रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम में। और जैसे अगर आप इसके साथ ही वीड बिलिंग की भी बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह वीड बिलिंग है। और यहाँ का अनुभव भी आपका बहुत ही अजब गजब रहेगा, क्योंकि तमाम जितने भी ये स्थल हैं उन स्थलों तक पहुँचने के लिए हम कहीं ना कहीं से प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से निकलते हुए, उन गांवों से, खेत खलियानों से निकलते हुए और ऊंची ऊंची वो पहाड़ियाँ, और दूर तक जब आप देखेंगे धौलाधार पर्वत, वो एकदम से आकर्षण का केंद्र हमारे लिए रहते हैं।

इन स्थलों पर पहुंचने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पहाड़ी क्षेत्र में निकलते हैं, हमें वहां उस क्षेत्र का सबसे पहले जो है ध्यान रखना होगा कि किस क्षेत्र की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। और आजकल खासकर जब आप बरसात के मौसम में यात्रा करते हैं तो ये ख्याल आप ज़रूर रखें कि कैसे ऐसे क्षेत्र पर आप ना निकलें जहां पर जो है बराबर जो है भूस्खलन हो रहा हो या इस तरह की कोई दिक्कतें हैं। यानी मौसम अगर ठीक है, क्लियर है, तभी आप इन पर्यटक स्थलों की सैर पर निकलें और वहाँ के जो आकर्षक केंद्र हैं उनका आनंद लें।

0: शफाकत, अमानत अली के गाए से गीत के साथ अब कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बसत नहीं आप बने एफएम शिमला के साथ। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। 9:57 हुए हैं। वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के बैंड ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जिसने भारत और सेशल्स की मजबूत मित्रता को दर्शाया। देशभर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी 103.7 MHz पर ये FM शिमला है।

जी हाँ, 10 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो रिम, यानी रिम म्यूज़िक मेल कार्यक्रम में आपको मेल बेस जो है रिक्वेस्ट भेजनी है और हम आपको सुनाएंगे आपके पसंदीदा गीत को। 11:05 पर कार्यक्रम रहता है पुरानी फिल्मों से। तो इस तरह से आप कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ, और आप यूं ही बने रहें, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, 10 बज चुके हैं और अब शुरू हो गया है आप सबका अपना कार्यक्रम म्यूजिक मील। इंतज़ार बहुत करते हैं आप, और जब इंतज़ार होता है तो जब उसका परिणाम हमें मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। मेल पर आधारित ये कार्यक्रम है और आप अपनी मेल समय भेजिए हमारे एड्रेस पर airfmshimla@gmail.com पर। इंतज़ार कर रहे हैं हम आपकी मेल्स का, और जल्दी से आप इस एड्रेस पर जब अपनी मेल भेजेंगे, सुनना चाहेंगे जो गीत आप, वही गीत आपको हम सुनाएंगे। आप जिक्र करते हैं अपने मित्रों का, उनका नाम भी आप शामिल करें और भेज दीजिए हमारे इस एड्रेस पर airfmshimla@gmail.com पर। हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे साथी जुड़ भी चुके हैं, और अभी जो हमारे साथ मेल पर हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, इन्होंने हमें ये भोपालगढ़ राजस्थान से जो है अपना मेल भेजा है, तो हम इनको इनकी पसंद का गीत सुनाएंगे। तो आप भी अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें मेल करें airfmshimla@gmail.com पर। और इन्होंने सुनना चाहा है आशा फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की है। सुनिए ये गीत, और यूँ ही बन रहे हमारे साथ कार्यक्रम चल रहा है म्यूज़िक मेल।

म्यूजिक में लिए कार्यक्रम आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। आशा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और इसमें आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की थी। हमारे पास अब म्यूजिक मेल कार्यक्रम में अगले श्रोता जुड़ चुके हैं, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आपका हमें ये मेल मिला है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हैं। आपने ये गीत सुनना चाहा है वो हम आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले जो फरमाइश करता है मेरिट कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। आपकी भी फरमाइश है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। भागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, आप भी कार्यक्रम का आनंद अपने परिवार और साथियों के साथ ले रहे हैं। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आप भी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जो हैं मोहम्मद फरमान हैं, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, आप भी बराबर कार्यक्रम का आनंद अपने साथियों के साथ लेते हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी हैं, फातिमा खातून हैं और सुरित रमेश साहू हैं। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी हैं, सोनम अदीबा हैं, दानिश अंसारी हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य और सामीरपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, आप सभी मिलकर जो हैं अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं और अभी जो फरमाइश हम तक आपकी पहुंची है वो हम आपको गीत सुना रहे हैं। जल्दी से आप इस गीत को सुने। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जो तमाम साथी म्यूज़िक मेल कार्यक्रम को आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं वो मेल करें airfmshimla@gmail.com पर। बस बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, अपनी फरमाइश के गीत आप सुन रहे हैं। अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अगर आप भी अपने पसंदीदा गीत को सुनना चाहते हैं तो जल्दी से म्यूज़िक मेल कार्यक्रम में अपनी मेल भेजें। airfmshimla@gmail.com पर इंतज़ार रहता है हमें आपकी मेल का। हमारे पास पहले से ही बहुत सारी मेल्स आ भी चुकी हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल दोबारा से अपना मेल कर रहे हैं। उनकी और एक फरमाइश हम तक पहुँच चुकी है। ऊपरकोट मोहल्ला चुखनटी बुलंदशहर से जो है मोहम्मद सईद अब्बासी हैं, निगत परवीन हैं और सरफराज हैं, फरादीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं, पूरा परिवार मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद लेता है। और अब हमारे पास निमनाबाद ज़िला जिंद हरियाणा से जो हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर हैं, गुरप्रीत सिंह हैं, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर, ये किसी भी गीत के लिए इस कार्यक्रम में फरमाइश कर रहे हैं। गांव फरांसी ज़िला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार, आप भी इस कार्यक्रम में फरमाइश कर रहे हैं गीत की। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल हैं, नीति शाह हैं, सुरभि हैं, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी, आप पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे पास बहुत रंग बिरंगे अंदाज में अब अगली ये आपकी मेल हम तक पहुंची है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और तमाम आप सभी साथी अपने अपनी फरमाइशों के साथ, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली ज़िला मुरादाबाद से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप सभी अपने फरमाइश की गीत को सुनने के लिए बहुत बेताब हैं और हम अब अगला गीत आपको आपके इस फरमाइशी गीत को सुना रहे हैं। आप सब भी जल्द से जल्द कार्यक्रम में जुड़िए क्योंकि आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से म्यूज़िक मेल कार्यक्रम चला है। आप अपनी मेल भेजें airfmshimla@gmail.com पर। सुनिए

म्यूजिक मेल कार्यक्रम आप आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से सुन रहे हैं। हमारे पास आपके मेल पहुंच रही है। बड़ा बम चौक खडवा मध्य प्रदेश से संजीता बमारकंडे और संजय मारकंडे, बेबी किट्टू, आपने भी एक फरमाइश अपनी लिखी है, गीत सुनना चाहते हैं आप, आपको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये गीत आप तक हम पहुँचाएँ। और हमारे पास अब अगली फरमाइश जो नज़र आ रही है उसे भेजने वाले हैं सुरेंद्र कुमार एंड रंजना देवी। आपने भरमा और चंबा से अपना ये मेल हम तक पहुंचाया है। और हमारे पास अब अगली जो फरमाइश है, महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े वकील वाल्मीकि नीना जी और स्वप्निल, आप सभी इस मिलकर इस कार्यक्रम को सुनते हैं। और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर हैं, जसवीर हैं, सीता और गीता हैं। अगर आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान और सौरभ हैं, साइना है, मेंडी है, आप सभी मिलकर कार्यक्रम का आनंद लें। सुनिए अपनी पसंद के इस गीत को।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत आपने मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार की आवाज़ों में सुना। आप म्यूज़िक मेल कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से। अगर आप भी अपनी मेल करना चाहते हैं AIR@musicmail.com पर जल्दी से अपनी मेल भेजें। अभी हमारे साथ महेश गेट नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, केशव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, आपने भी अपनी फरमाइशी गीत को सुनना चाहा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्टो, रोजी पर्ल और विलिस भी कार्यक्रम में जुट चुके हैं। और अगली जो फरमाइश है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, आप मिलकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद के इस गीत को।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड कार्यक्रम म्यूजिक मेल। अब जो हमें ईमेल आई है वो है हीना फिल्म के लिए। लिखने वाले हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इसके साथ ही एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। कॉल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, नेपी सहाने और मोहम्मद अफजल मलिक।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड कार्यक्रम म्यूजिक मेल। स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म के लिए हमें मेल भेजी है नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुनी देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और इनके साथी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शिखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शिखावत, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून ने भी मेल भेजी है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड कार्यक्रम म्यूजिक मेल। फूल और कांटे, इस फिल्म के लिए हमें मेल आई है। शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, पश्चिम सिंह भूम, चाईबासा, झारखंड से। इसके साथ ही हमें मेल किया है विलेज पाटी से अमृता वर्मा और इनके परिवार वाले, विलेज सरघेन से कृष्णा वर्मा, मेहर सिंह वर्मा, डिंपल वर्मा और मनु वर्मा।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड कार्यक्रम म्यूजिक मेल। और देखिए कि श्रोता हैं हमारे, ना जाने उनकी ईमेल कितनी बार आ चुकी है और उनकी फरमाइश हमने पहले से ही कार्यक्रम में शामिल कर दी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग नाम से कुछ अपने नाम लिखकर भेज देते हैं तो हमें पता चल जाता है। खैर, आलोक वर्मा खेल खेल में ये फिल्म है और इस फिल्म के लिए इन्होंने मेल किया है और इसके साथ ही हमें मेल आई है। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप की।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DGH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की सरकार और वहां की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये सम्मान जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहे सभी देशों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। धर्मशाला में ये कार्यक्रम मिनी सचिवालय कचहरी अड्डा स्थित कैबिनेट हॉल में तथा पालमपुर में नगर निगम कार्यालय में संपन्न होगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा को नगर निगम धर्मशाला तथा विधायक आशीष बुटेल को नगर निगम पालमपुर के पदेन पार्षद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह व निर्वाचन प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के उपरांत महापौर व उपमहापौर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। मंडी में कम ऊंचाई वाले इलाकों से आई अर्ली वैरायटी टाइडमैन सेब प्रति 20 किलो बॉक्स 2,100 रुपये तक बिका है। शिमला जिला के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों मशोबरा, ठियोग और कोटखाई से रोजाना सेब के 8 से 10 बॉक्स मंडी पहुँच रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: आढ़तियों के मुताबिक सीजन की शुरुआत अच्छी है और बागवानों को 100 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इस बार मौसम की मार से उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे दाम अच्छे मिलने की संभावना है। मंडी में अभी नाशपाती, पलम, चेरी समेत स्टोन फ्रूट की आवक भी जोरों पर है। आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि कच्चा सेब मंडी में ना लाएं, इससे दाम गिरने की संभावना रहती है। वहीं सेब सीजन को सुचारू बनाने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागवानों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो और परिवहन और विपणन व्यवस्था प्रभावी रहे। फागू में 15 जुलाई तक मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिले में इस वर्ष करीब 2,30,990 मीट्रिक टन सेब के उत्पादन का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह 4,00,000

0: 44684 मीट्रिक टन उत्पादन था। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: देशभर में आज संत गुरु कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत कबीरदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक

0: संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा ने 24 से 28 जून तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ 34 मिनट 28 सेकंड और 75 मिली सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
1: एक ही राष्ट्रीय स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे आकांक्षी जिला चंबा के रेटा गांव की सीमा ने हासिल किया और समाज को ये संदेश दिया है कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि चंबा की धाविका सीमा ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर लिया है। सीमा का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भारत के लिए लाना है और ये प्रतियोगिता सितंबर माह में जापान में होगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धर्मशाला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम साफ बना हुआ है। मंडी में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने एक दो दिन के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में पहुँचने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। ये समय है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं उन यादगार पलों में जिनकी मिठास आज भी दिलों में बसी हुई है। पुरानी फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे समाज का आईना भी थी। उनकी कहानियों में सादगी थी, गीतों में मिठास थी और अभिनय में एक अलग ही जादू था। आज भी जब उन फिल्मों के गीत कानों में पड़ते हैं ना, तो बीता हुआ दौर आंखों के सामने ताजा हो जाता है।
1: नहीं तुम मुझसे बात करती हो।

सच्चा झूठा फिल्म में अभी आपने रफ़ी साहब और लता मंगेशकर को सुना। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। उस दौर की फिल्मों के गीतों ने संगीत की दुनिया को अनमोल धरोहर दी। पुरानी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी, भावनाओं की गहराई और परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य कहानियां। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी उनका आकर्षण कम नहीं हुआ। किस्मत फिल्म का ये गाना है जिसे गाया है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने। SH बिहारी के बोल हैं, तर्ज दी है ओपी नैयर ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय किया।

0: है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि वे एहसास थे, यादें थे और जिंदगी के हर रंग के साथी थे। खुशी हो, गम हो, प्यार हो, बिछड़ने का दर्द, हर भावना के लिए उस दौर के गीतों में एक अलग ही मिठास और अपनापन था। रफी साहब की आवाज में लीजिए सुनिए यह गीत। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूं। शब्द रचना है मजरूह की, संगीत रचना OP नैयर की।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। पुरानी फिल्मों के गीत हमें हमारी यादों से जोड़ते हैं, बीते हुए पलों को फिर से जीने का अवसर देते हैं और जीवन की भागदौड़ के बीच सुकून के कुछ पल भी प्रदान करते हैं। लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में तीन देवियाँ फिल्म से ये गीत। गीतकार है मजरू, संगीतकार एस डी बर्मन।

ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 11:30 हुए हैं। लीजिए पेश है पहाड़ी संगीत।

पहाड़ी संगीत केवल सुरों और ताल का संगम ही नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन का आईना है। इसमें पहाड़ों की सादगी, लोगों की भावनाएं, त्योहार की रौनक और प्रकृति के प्रति प्रेम साफ झलकता है।

पहाड़ी संगीत हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और अपनी संस्कृति का सहेजने का संदेश देता है। ये संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करता है। जिस मिट्टी की खुशबू दिल में बस जाए, उसके गीत कभी भुलाए नहीं जाते। सरिता बुशहरी के बाद लीजिए सुनिए रविंद्र वर्मा को।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। लीजिए सुनिए भुवनेश कुमार को।

पहाड़ी संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का

आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:10 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म में अभी आपने रेखा भारद्वाज और साथियों को सुना। बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के, तर्ज दी थी प्रीतम ने।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आशिकी 2 फिल्म में लीजिए सुनिए तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह को। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार जीत गांगुली।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ नीना वर्मा, और मेरे साथ हैं
1: मैं सीमा ठाकुर। आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप।
1: जी बहनों, ये अमर वाणी संत कबीर दास जी की है, जिन्होंने अपने सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली विचारों से समाज को सत्य, प्रेम और मानवता का मार्ग दिखाया।
0: जी, और संत कबीर दास भारतीय संत परंपरा के ऐसे महान कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच का विरोध किया, और उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष जेठ माह की पूर्णिमा को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है।
1: बहनों, ये दिन हमें अनेक उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाने की प्रेरणा देता है।
0: जी बिल्कुल, और संत कबीर दास का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सामान्य मान्यता के अनुसार उनका पालन पोषण वाराणसी के एक जुलाह दंपति ने किया था।
1: संत कबीरदास ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनका जन्म ज्ञान अद्भुत था। उन्होंने अपने अनुभव, चिंतन और सत्संग के आधार पर जीवन के गहरे सत्य को समझा और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी।
0: कबीरदास जयंती केवल एक महापुरुष की जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि ये सत्य, प्रेम, समानता और मानवता का उत्सव है। इस दिन देश भर में कबीर के दोहे का पाठ, भजन, सत्संग, विचार गोष्ठियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: जी, और कबीरदास ने सत्य को जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना। उनका विश्वास था कि सत्य बोलने और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है।
0: जी, और कबीरदास ने गुरु को शिष्य से भी ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाता है, उनका ये मानना था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
1: उन्होंने अपने दोहों और वाणी के माध्यम से समाज को सत्य, प्रेम, समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाया। और यदि प्रत्येक व्यक्ति सत्य, प्रेम, करुणा और भाईचारे के मार्ग पर चले तो हमारा समाज अधिक सुखी, समरस और विकसित बन सकता है।
0: जी, और कबीरदास के विचार केवल इतिहास की धरोहर ही नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक उज्ज्वल मार्गदर्शन है।
1: जी,

0: बहनों, एक महिला केवल रिश्तों को ही नहीं निभाती बल्कि वो रिश्तों में जीवन भरती है। लेकिन एक सवाल हम सभी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है कि क्या एक महिला का जीवन केवल दूसरों के लिए ही है? क्या उसके अपने सपनों की कोई कीमत नहीं? क्या उसकी इच्छाएं, उसकी प्रतिभा और उसका आत्मसम्मान सिर्फ जिम्मेदारियों के नीचे दबकर रह जाना चाहिए?
1: जी, और इन्हीं सब सवालों के साथ चलिए आज बात करते हैं परिवार की देखभाल के साथ स्वयं का करियर बनाना भी जरूरी है।
0: जी बहनों, देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम घर से बाहर निकलना चाहते हैं या कोई भी महिला जब अपने लिए बात करती है, खासकर

0: करियर की। तो करियर क्यों ज़रूरी है? तो बहनों, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि करियर केवल नौकरी नहीं है। करियर का अर्थ है अपनी पहचान बनाना, आत्मनिर्भर होना, आत्मविश्वास बढ़ाना और अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग करना, समाज को और जो समाज के विकास है में अपना योगदान देना।
1: जी, और बहनों, जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार मजबूत बनता है। अक्सर बहुत से लोगों बोलते हुए हमने सुना होगा आपने भी, कि अगर महिला घर से बाहर निकले तो घर परिवार छूट जाएगा। लेकिन बहनों, ये सच है कि परिवार और करियर दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सही योजना, सहयोग और समय प्रबंधन से दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है।
0: जी बिल्कुल बहनों, ये सच है कि परिवार हमारी पहली जिम्मेदारी है। बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों का सम्मान, पति पत्नी का विश्वास, इन सब का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि महिला अपने अस्तित्व को ही भूल जाए।
1: जी, और जब एक महिला कमाती है तो केवल पैसा नहीं आता, घर में आत्मविश्वास भी आता है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, ज़रूरत पड़ने पर परिवार आर्थिक संकट से बाहर निकल जाता है और महिला के निर्णयों से जो सम्मान उनका बढ़ता है। आज महिलाएं जो घर है
0: हर क्षेत्र में, जी नीना, आप कहना चाह रही कि आज महिलाओं के जब हम बात करते हैं तो ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया है, जहां आगे नहीं बढ़ी है। चाहे हम बात करें शिक्षा की, विज्ञान की, खेल जगत की, राजनीति हो, व्यापार हो, कृषि हो, हर जगह महिला अपनी पहचान बना रही है। यदि महिला के पास अपनी पहचान होगी तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेगी।
1: जी जी, और बहनों, अगर अक्सर बच्चे भी वही सीखते हैं जो देखते हैं।
0: जी,
1: जब बच्चे अपनी माँ को आत्मनिर्भर देखते हैं तो वे भी अपनी माँ का सम्मान करना सीखते हैं, और बेटियां अपने सपनों को पूरा करने का साहस सीखती हैं।
0: जी बिल्कुल, उन्हें जो भी कुछ मिलता है अपने सपनों को उड़ान देने की शुरुआत वो देखते हैं कि उनकी माता कितनी आत्मनिर्भर है, वो कितने अच्छे से अपनी डिसीजन ले पा रही है।
1: जी जी,
0: तो यही सब कुछ हमें अपने बच्चों में भी देखने को मिलता है। बहनों, कहना आसान लगता है पर हकीकत में जब कोई महिला अपने अनुसार जीवन जीने की सोचती है ना, तो उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती है, जैसे कि समय की कमी, सामाजिक सोच, आत्मविश्वास की कमी, और कभी कभी तो उसको परिवार का सहयोग ना मिलना भी उसके सामने एक चुनौती की तरह खड़ा हो जाता है।
1: जी, लेकिन याद रखें बहनों, सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है।
0: जी,
1: और ऐसे में जरूरी है कि आप समय का सही प्रबंधन करें, परिवार से खुलकर बातें करें, अपनी पढ़ाई कभी ना छोड़ें, नई नई तकनीक सीखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और स्वयं पर जो है अब विश्वास करना सीखें।
0: जो महिलाएं अपने सपनों को उड़ान देती है वो अपने पूरे परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। बहनों, आत्मनिर्भर महिला परिवार की शान होती है। सपनों को उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए।
1: जी, और केवल महिला ही नहीं, परिवार की भी जिम्मेवारी है कि वे अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए अवसर दें, बहू को सम्मान दें, पत्नी के सपनों को समझें, माँ के त्याग को पहचानें, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार के सहयोग से ही आगे बढ़ सकती है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि बहनों देखिए, जब एक महिला अपने सपनों को पूरा करती है ना, तो वो केवल अपनी सफलता नहीं लिखती बल्कि वो आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी बदल देती है। उसकी सफलता से कई बेटियों को प्रेरणा मिलती है, कई परिवार मजबूत बनते हैं और कई सपनों को नई उड़ान मिलती है।
1: जी जी,
0: तो बहनों देखिए, इन पंक्तियों के साथ इस बात को और भी हम अपनी बात को रखना चाहेंगे कि घर भी मेरा, सपने भी मेरे, दोनों का सम्मान ज़रूरी है। परिवार मेरी पहचान है पर मेरी खुद की पहचान भी ज़रूरी है। मैं रिश्तों को भी निभाना चाहूँगी और अपने सपनों को भी सजाऊंगी, क्योंकि एक सशक्त महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की नींव होती है।
1: जी बिल्कुल।

0: बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम बच्चों के दोस्त कैसे बन सकते हैं। देखिए बहनों, बच्चों का भविष्य उनकी आदतों और उन संस्कारों पर निर्भर करता है।
1: जी
0: बचपन में डाली गई अच्छी आदतें जीवन भर काम आती है, इसीलिए बहनों बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी आदतें अपनाने की सीख जो है वो देनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे कि क्यों समय पर उठना और समय पर सोना दोनों ज़रूरी होते हैं, यानी कि बच्चों को नियमित दिनचर्या का पालन करना सिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। माता पिता, शिक्षकों और बुज़ुर्गों का आदर करना कि हमें क्यों अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर हम ये बचपन से ही उनको सिखाना शुरू कर देते हैं तो नीना आपने देखा उनके व्यवहार में ये स्वतः ही नज़र आना शुरू हो जाता है।
0: जी जी बिल्कुल
1: इसी तरह छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि क्यों सच बोलना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और झूठ से हमें किस तरह से बचना चाहिए।
0: जी जी और साथ ही देखिए बहनों, दूसरों की मदद करना भी हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं या उनकी सहायता करना बहुत अच्छी बात है। ऐसी आदतें हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो जैसे अभी सीमा जी ने कहा कि उनको स्वतः ही उनके व्यवहार में आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ पढ़ाई और खेल और आराम के लिए भी उनका समय तय करना और सफाई का ध्यान रखना, जैसे हाथ धोना और अपने आसपास का जो उनका वातावरण है, आसपास की स्थान है, जगह है, उसको साफ रखना भी जो आदत है उनको बचपन से डाली जाए तो वो बड़े होकर भी उसका ध्यान रखेंगे। अनुशासन में कैसे रहना है, ये सब छोटी छोटी बातें जो है इस तरह की आदतें बच्चों को आगे चलकर उनका सफल बनाती है, जिम्मेवार बनाती है और एक अच्छा इंसान उनको बनाती है। इसीलिए हर बच्चे को बचपन से ही अच्छी आदतें अपनानी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहनों, बच्चे ताउम्र वही व्यवहार करते हैं जो माता पिता उन्हें बचपन में सिखाते हैं, और हर अभिभावक माता पिता बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा हम सभी मानते ही हैं। इसके
0: जी
1: लिए ज़रूरी यही है कि उनकी बुनियाद को पक्का किया जाए, और ये तभी होगा बहनों जब हम ये छोटी छोटी बातों को देखने को हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन बाद में यही बातें बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसलिए अगर हम बचपन से ही उनको ये छोटे छोटे से गुण सिखा दें तो ये बाद में बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं।
0: जी जी और बच्चों को सिखाने का जो तरीका है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही बच्चे उम्र और कद में हमसे छोटे होते हैं, परंतु उनकी जो अक्ल है वो बड़ों से कम नहीं होती। और इसीलिए बच्चों को आज्ञाकारी और नेक इंसान बनाने के लिए बचपन से ही इसकी तैयारी जो है माता पिता को

0: शुरू करनी चाहिए?
1: जी, हमें ना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त होना है और ना ही बहुत ही ज़्यादा ढील देने की ज़रूरत है। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसका सही से विकास नहीं हो पाता है। जो माता पिता ज़्यादा सख्ती करते हैं उनके बच्चे अक्सर अपने मन की बात कहीं ना कहीं अपने माता पिता को नहीं बता पाते और डरे डरे से रहते हैं। और वहीं पर अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे देते हैं तो कभी कभी ये भी देखने में आता है कि इस छूट के कारण भी बच्चे अपने माता पिता की अहमियत ही नहीं समझ पाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल सीमा। और बच्चे सीखने की प्रक्रिया में कई बार गलतियां भी करते हैं, जिसके लिए हमें उन्हें डांटने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही ढंग से समझाने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने के लिए माता पिता को बहुत धैर्य से काम लेना होता है।
1: बचपन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक, मार्गदर्शक और सच्चे उनके सहारे भी होते हैं।
0: जी
1: इसलिए
0: जी
1: ये ज़रूरी है कि माता पिता केवल अनुशासन सिखाने वाले ही ना बने बल्कि बच्चों के अच्छे दोस्त भी बने।
0: जी जी और जब माता पिता बच्चों के अच्छे दोस्त बनते हैं, तो बच्चों और माता पिता के बीच एक विश्वास और प्रेम का जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। जो माता पिता केवल बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं होते, बल्कि बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी होते हैं।
1: इसलिए हर माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बने ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ते रहे। और ना हम अगर आजकल के समय को देखें तो ये आज के समय में और भी ज़रूरी हो गया है कि हम बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ती वाला व्यवहार रखें ताकि उनके अंदर क्या चल रहा है वो सबसे पहले आपके पास आकर शेयर कर सके।
0: जी बिल्कुल। तो ये तो हुई बातें। सीमा, आप सुन लेते हैं गीत।
1: जी।

0: जी नीना, जैसा कि गीत में कह रहे थे कि सावन में बरसेगा पानी, तो बरसात की लगभग शुरुआत हो ही चुकी है और बादलों ने जो है वो बरसना शुरू भी कर दिया है।
1: जी जी
0: तो और अगर हम बात करें कार्यक्रम की आज की, तो हम पहुंच गए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। तो चलिए
1: जी
0: बहनों, बात कर लेते हैं कि अगर भूख ना लगने से की समस्या से आप भी जूझ रही हैं, तो ऐसे में से कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको करके आप ये जो इस समस्या से बाहर निकल सकती हैं?
1: जी जी बिल्कुल। देखिए बहनों, भूख ना लगने पर हमारे पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी का संकेत है।
0: जी
1: ऐसे में कुछ प्राकृतिक तरीका अपनाकर इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। इसके हमारी जो इस रसोई है सीमा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती है जिसका उपचार करके हम आसानी से जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उससे बाहर निकल सकते हैं।
0: जी तो बहनों देखिए, अगर भूख ना लगने की शिकायत आपको भी रहती है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अदरक को कद्दूकस करके उसका रस आपको निकाल लेना है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 बार इसको पीना है। इस अगर आप इसको लगातार करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है।
1: जी जी और इसी तरह बहनों, 2 या 3 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच सौंफ और आधा बड़ा चम्मच मेथी दाना डालकर अगर आप उबाल लेती हैं और उसका ठंडा होने पर उसको छान कर पी लेती हैं, तो इससे भी आपके जो पाचन तंत्र है उसमें आपको राहत मिलेगी।
0: जी बहनों देखिए, वैसे तो गेहूं, चावल और दाल का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में होता है, और इन्हें खाने की परंपरा हमारे देश में पिछले कई दशकों से भी है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे अनाज हैं जो कभी खूब चलन में थे, लेकिन आज के वक्त में इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस श्रेणी में आप मोटे अनाज आते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रोगी जैसे कोदा और कद्दू जो है वो शामिल है। कुट्टू का आटा भी इसमें शामिल होता है। ये अनाज पौष्टिक तत्व से भरपूर होते हैं, और अगर आप इनको अपने भोजन में शामिल करती हैं, तो पोषक तत्वों के साथ साथ ये जो भूख ना लगने की समस्या होती है, उससे भी ये निजात दिलाने में मदद करते हैं।
1: जी, तो इसीलिए ये बढ़ती उम्र वाले हों, लोग हों या बच्चे, ज़्यादातर शारीरिक मेहनत करने वाले जो लोग हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बहनों, इसमें जो है, देखिए, ज्वार जो है शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है, अच्छी मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है, खून के लिए इसमें फॉलिक एसिड होता है, इसके अलावा भी अन्य कई पोषक तत्व होते हैं जो आपको जो है पौष्टिक तत्वों से आपका शरीर जो है वो अच्छा रहता है और जिससे आपकी जो पाचन शक्ति है वो भी अच्छी रहती है, भूख अच्छी लगती है और आप स्वस्थ रहते हैं।
0: जी और नीना देखिए, इसके साथ साथ हम हमेशा कहते ही हैं कि पानी खूब मात्रा में पिएं, अपनी दिनचर्या में पानी को ज़रूर शामिल करें, और इसके साथ साथ जो भी मौसमी

0: फल और सब्जियाँ आपको मिलती है उनको अपने आहार में ज़रूर शामिल करती रहें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि फिर भी आपकी ये समस्या जो है वो नहीं ठीक हो पा रही है, तो आपको हम यही सलाह देते हैं कि आप एक बार चिकित्सक को ज़रूर दिखा लें।
1: जी जी बिल्कुल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सम्मेलन। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाला है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के

0: दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 1:10 हो चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती का। हम हाजिर हैं सुरों की मिठास, गीतों की खुशबू, यादों की सौगात लेकर आपके साथ। तो तैयार हो जाइए कुछ मधुर धुनों, शानदार गीतों और ढेर सारी मस्ती के साथ। फिल्म का नाम है आजा नचले, आवाज सुनिधि चौहान की।
2: Dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, dinata, d

0: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। संगीत वो जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल को जोड़ देता है। बंटी और बबली फिल्म में लीजिए सुनिए शंकर महादेवन, सौम्या राव और साथियों को। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत रचना शंकर एहसान लॉय की।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

म्यूजिक मस्ती का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि संगीत जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी भर देता है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं ना, तब संगीत हमारे दिल की बात कह देता है। पार्टनर फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ें हैं वाजिद लाबजनजुआ और स्नेहा पंत की, गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार साजिद वाजिद।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। सिंग इज किंग, इस फिल्म में लीजिए सुनिए लाभजन जुआ और सूजी क्यू को।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। एजेंट विनोद फिल्म में लीजिए सुनिए नंदिनी श्रीकर, मुअज्जम रिजवान और साथियों को। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य की, तर्ज दी है प्रीतम ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। देखिए जिंदगी में चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, संगीत के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, क्योंकि संगीत मन को सुकून और दिल को खुशी देता है। धूम 2 फिल्म में लीजिए सुनिए विशाल डडलानी और डोमिनिक सिरजो को।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती FM शिमला पर। क्वीन फिल्म का गीत सुनिए, जिसे गाया है लाभजन जुआ, सोनू कक्कड़ और नेहा कक्कड़ ने। गीतकार है अन्विता दत्त, संगीतकार अमित त्रिवेदी।

ओम शांति ओम फिल्म का गाना सुनिए जिसे गाया है उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और शान ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार विशाल और शेखर।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। समय मिला लीजिए, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 2 बजे हैं। लीजिए पेश है सब रंग कार्यक्रम। रंग केवल हमारी आंखों को ही नहीं बल्कि हमारे मन और भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। जैसे संगीत हमारे दिल को छूता है ना, वैसे ही जीवन के अलग अलग रंग हमें नई ऊर्जा

0: सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2:15 होने को हैं। दोपहर हिंदी समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।

0: छोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार

0: से अमीषा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है शिखरों के स्वर कार्यक्रम। हिमालय की वादियों से उठती मधुर धुनों, पहाड़ों की सादगी और लोक संस्कृति की मिठास से सजा ये कार्यक्रम लेकर आया है आपके लिए लोक संगीत के अनमोल रंग। सबसे पहले लीजिए सुनिए जोगिंदर हाबी और साथियों को।

शिखरों की ऊंचाइयों की तरह ही हमारे लोक संगीत की पहचान भी बहुत ऊंची और समृद्ध है। इन गीतों में कभी मेलों की रौनक है, कभी त्योहारों की खुशी और कभी रिश्तों की मिठास। लीजिए सुनिए बसंत लाल ठाकुर को।

लोक संगीत केवल गीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का आईना है। इसमें पहाड़ों की खुशबू है, नदियों की कलकल, खेतों की हरियाली है। लीजिए सुनिए करनैल राणा को।

आइए सुनते हैं लोभा राम गुंजेटा को।

0: शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। उम्मीद है लोक संगीत की इन मधुर धुनों ने आपके मन को छुआ होगा और आपको अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति की ओर करीब लाया होगा। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। 3 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। वे ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री विमान अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का 4th चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों की खरीद पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिन्हित 1000 मार्गों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 5 वर्ष तक 65,000 रुपये और डीजल बसों के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह परिचालन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 32 सीटों वाली इलेक्ट्रिक व डीजल यात्री बसें पात्र होंगी। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को अध्यक्ष और जितेंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। उधर पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। सोलन में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि महापौर व उपमहापौर के चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेसी पार्षद मौजूद नहीं थे और कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया।
3: सभी 17 पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद हमने आधे घंटे का समय मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन के लिए दिया था। उसके बाद कुछ पार्षद बैठक में दोबारा हाजिर नहीं हुए और कोरम पूरा न होने की वजह से बैठक को स्थगित कर दिया गया है और अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 2 तारीख को 3 बजे रखा गया। सदस्यों के कोरम का जो प्रावधान है अगली बैठक में ये अब लागू नहीं होगा।
2: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र के तहत महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि सोलन, मंडी और धर्मशाला नगर निगम में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है लेकिन राज्य सरकार महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने को लेकर हथकंडे अपना रही है। बिंदल ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों को अतिक्रमण के झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
4: जनता ने मत दिया, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सोलन कॉरपोरेशन में, मंडी कॉरपोरेशन में और धर्मशाला कॉरपोरेशन में जीत करके आई। केवल हथकंडे अपनाने के लिए 1 महीने तक ओथ नहीं कराई। जनता

0: सभा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हाईजैक करने के लिए षड्यंत्र किया। कोई पूछने वाला नहीं है कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। ज़रूरतमंद बच्चों पर विशेष नज़र रखी जाएगी और उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। ये योजना शहरों की झुग्गी बस्तियों, प्रवासी और वंचित समुदायों के बच्चों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता, नए अवसरों का द्वार। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
1: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता अर्थात सीईटीए 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यह समझौता भारत की व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देना है। इससे भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME, मछुआरों, स्टार्टअप्स, कारीगरों और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों को वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यूनाइटेड किंगडम भारतीय वस्तुओं पर लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बड़े और उच्च क्रय शक्ति वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद और कृषि प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की संभावना है। कृषि क्षेत्र के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय मसालों, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम के गूदे, आचार और दालों जैसे उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही भारत ने डेयरी, खाद्यान्न, मोटे अनाज, सेब, ओट्स और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखकर घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। MSME और पारंपरिक उद्योगों के लिए भी ये समझौता नए अवसर लेकर आया है। भारत के छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, खेल सामग्री, खिलौने और अन्य विनिर्माण उत्पाद अब ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

0: के साथ साथ गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। साथ ही भारत ने डेयरी, खाद्यान्न, मोटे अनाज, सेब, ओट्स और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखकर घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों के लिए भी ये समझौता नए अवसर लेकर आया है। भारत के छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, खेल सामग्री, खिलौने और अन्य विनिर्माण उत्पाद अब ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। शुल्क समाप्त होने से भारतीय उत्पादों की लागत कम होगी और निर्यात बढ़ने की संभावना बनेगी। इससे देश के विभिन्न औद्योगिक और हस्तशिल्प केंद्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सेवा क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत है, इस समझौते का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। इसके अलावा अनुबंधित सेवा प्रदाताओं, निवेशकों, योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों और शेफ जैसे पेशेवरों के लिए भी ब्रिटेन में कार्य करने के अवसर बढ़ेंगे। समझौते का एक उल्लेखनीय पहलू सामाजिक सुरक्षा योगदान से जुड़ा है। इसके अंतर्गत भारत से अस्थायी रूप से ब्रिटेन भेजे गए कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान की बाध्यता से राहत मिलेगी। इससे हजारों भारतीय पेशेवरों और अनेक भारतीय कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समझौता भारत के निर्यात को बढ़ावा, विदेशी निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में सहायक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौते केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये वैश्विक निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत करते हैं। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ सकती है और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिल सकती है। हालांकि किसी भी मुक्त व्यापार समझौते की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, समयबद्ध आपूर्ति, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही छोटे उद्यमों को भी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक जानकारी, वित्त और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता केवल दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भारत के किसानों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और युवाओं के लिए नए वैश्विक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यदि इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो ये समझौता निर्यात वृद्धि, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था भारत यूके व्यापक आर्थिक व व्यापार समझौता, नए अवसरों का द्वार। वाचक स्वर था राकेश शर्मा का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3:10 हुए हैं। ये समय है ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक का। आज भी जब हम पुराने सदाबहार गीत सुनते हैं ना, तो यादों का कारवां अपने आप चल पड़ता है और बीते हुए पल फिर से हमारे सामने आ जाते हैं। दोस्तों, रेडियो और पुराने फिल्मी गीतों का रिश्ता बहुत पुराना और बेहद खास रहा है। वर्षों तक रेडियो ने इन मधुर गीतों को घर घर तक पहुंचाया और श्रोताओं के दिलों में बसाया। पुराने गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, वे तो हर दौर में दिलों की धड़कन बने रहते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। गीतकार है मजरू, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

ऑल हिट्स फिल्म म्यूजिक में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 3:30 हुए हैं, लीजिए पेश है युवानी कार्यक्रम।

युवा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त यज्ञम शर्मा, हाजिर हूँ लेकर आपका कार्यक्रम युववाणी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ हंसते खेलते युववाणी कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए, इंतज़ार खत्म हुआ, सबसे पहले आप सभी को संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं। आज ही के दिन कबीर जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था। उनकी लिखी बातों में जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा छिपी है। चलिए दोस्तों, आगे की बातें करने से पहले एक मैंडेटरी म्यूजिकल ब्रेक के बाद करते हैं।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जो कि है कबीर दास जी, एक ऐसे महापुरुष, ऐसे कवि और ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने लगभग 600 वर्ष पहले जो बातें कही थी वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई मत है, लेकिन ये निश्चित है कि उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने ना तो किसी बड़े स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और ना ही किसी राजमहल में जीवन बिताया। फिर भी उनके शब्द आज विश्वविद्यालयों में

बढ़ाए जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि महान बनने के लिए ऊंचा पद नहीं बल्कि ऊंचे विचार चाहिए। कबीर ने अपने जीवन में कपड़ा बुना, लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने समाज की टूटी हुई सोच को जोड़ने का प्रयास किया। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिर करते हैं आगे की बातें।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीर के बारे में। कबीर किसी एक धर्म, जाति या समुदाय के नहीं थे, वे पूरी मानवता के संत थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, अंधविश्वास और पाखंड का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। वाह, क्या दोहा है दोस्तों। इस दोहे का अर्थ आज भी इतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी लोग किसी व्यक्ति को उसके नाम, धर्म, जाति, भाषा या पहनावे से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं, मनुष्य का पहचान उसके विचारों और कर्मों से होना चाहिए।

दोस्तों, कभी जी ने कभी दूसरों की कमियां निकालने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये दोहा हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की गलतियां ढूंढने से बहुत तेज़ हो गए हैं, लेकिन कबीर कहते हैं, पहले स्वयं को सुधारो। यदि हर व्यक्ति अपनी कमियों पर काम करे तो समाज अपने आप बेहतर बन जाएगा। युवा पीढ़ी के लिए तो खुलकर ज्ञान पड़ा है इन कबीर जी के दोहों में। हमें ज़रूरत है तो इन्हें सुनकर अपने भीतर समाने की।

चलिए दोस्तों, एक दोहा दोहराते हैं साथ में, जो कि काफ़ी फेमस भी है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये केवल परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए संदेश है। आज हम कहते हैं कल से पढ़ेंगे, अरे कल से व्यायाम करेंगे, अरे भाई कल से मोबाइल कम चलाएंगे, लेकिन वे कल कभी नहीं आता। कबीर हमें वर्तमान में जीना और कार्य करना सिखाते हैं। दोस्तों, आज हमें क्या सीखना चाहिए? कबीर हमें 5 सरल लेकिन महान बातें सिखाते हैं। सत्य बोलने का साहस रखे, समय का सदुपयोग करे, पहले स्वयं को सुधारे, हर इंसान का सम्मान करे, प्रेम करुणा और मानवता को अपने सबसे ऊपर रखे। यदि हम केवल इन 5 बातों को अपने जीवन में अपना ले तो हमारा परिवार, समाज और देश निश्चित रूप से बेहतर बन सकता है। आज कबीर जयंती पर हम केवल उनके चित्र पर फूल ही ना चढ़ाए, बल्कि उनके विचारों को अपने व्यवहार में उतारने का संकल्प ले। जब हम किसी को उसकी जाति नहीं बल्कि उसके गुणों से पूछेंगे, जब हम दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को सुधारेंगे, जब हमारी वाणी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी, तभी कबीर जयंती मनाने का वास्तविक अर्थ पूरा होगा।

दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। आज शब्दों की शक्ति पहले से कई अधिक बढ़ चुकी है। दोस्तों, समय भी हो रहा है कार्यक्रम की समाप्ति का। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात नई बातों के साथ। तब तक यज्ञम को दीजिए इजाज़त, बने रहिए 103.7 MHz के साथ।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। 4 बजे हैं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है गर्लफ्रेंड। गीतकार हैं प्रवीण भारद्वाज, संगीतकार दब्बू मलिक।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो चलिए आपको बता दें कि प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री शुरू होने वाली है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 30 जून से मानसून की आहट महसूस होने लगेगी और 1 जुलाई को मानसून हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। 1 से 4 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

यलगार फिल्म में अभी आपने उदित नारायण और सपना मुखर्जी को सुना। गीतकार थे सुदर्शन फाकेर, संगीतकार चन्नी सिंह। लीजिए अब सुनिए अग्नि साक्षी फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति ने। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना नदीम श्रवण की।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। अपनी रेडियो हम सफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है चंबियाली कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

जी तो हाजिर न अखबारी फेरी तुंदा ही अपना चंब्याली कार्यक्रम लेकर तै स्वागत कर दिया तुसु सभी लोग जी बिल्कुल जियां तुसु पता है जे असे चंब्याली कार्यक्रम जे असे हर एक सोमवार है ब्रेपता ते शनिचरे लेकर इंदिया तै कोशिश कर दिया जे तुसी ते अपनी भाषा अपनी बोली तै जड़ी इंदी संस्कृति हा इत कने असे जुड़ी सकन ताकि जड़ी इंदी संस्कृति हा जड़ी इंदी पछाण हा ए भी जे असे

सीती सीते जे असें बचोरे रेहा ते इंदी जेह्ड़ी इनें वाली पीढ़ी ही इंदियां तगर जे असें पुज्जी सका। अज्जकल असें अपने जेह्ड़े इंदे नौ बच्चे हैं जे असें अपने युवा वर्ग की गल करते हैं तो ये अपनी भाषा जो जे असें बल्लें बल्लें जे असें भूलना लगू रहे हैं। खास कर अज की पीढ़ी जेड़े निक्के बच्चे हैं असें इं लगू रहे हैं जे ये स्कूला था जे असें घर जो इंदे हैं तब हिंदी में जे असें अपनी मम्मी पापा सीते गल करते हैं ते अपनी कोई भैन भाई या तियां सीते भी जे असें हिंदी में ही गल करते हैं अपनी भाषा जो जे असें बिल्कुल भूलना लगू रहे हैं। तो असें चाहते हैं जे तेरे जेड़े मम्मी पापा हैं कि से अपनी दादा दादी कने रहते हैं से जे हैं से अपने बच्चे जो अपनी भाषा जे असें जरूर शिकरान कर चुके इंदी भाषा इंदे अक पछैन हा ते ऐसा ही पछैन री वजह थों जे असें हिमाचली बल्ले गांदे हैं हिमाचल रे चंबे थों असें बल्ले गांदे हैं जे इंदी पछैन ना रहते तो असें ना बल्ले सकते जे असें हिमाचल रे कस जिले थों जे हैं से हैं ते इने वाले टाइम में जे असें बच्चे जो ता ये जानकारी भी ना रहनी जे से हिमाचल में जे असें कस जगह था हूँ इनका जो कि आजकल बच्चे जे इनसे पढ़ाई लिखाई करे करे जे असें पढ़ना चले गए बारह जो फिर त्यारी नौकरी लग गई नौकरी लगना लगने थों बाद जे असें त्यारे अक अपने अलग दुनिया अपना संसार जे असें बसाए लेंदे हैं तो इस टाइम में से अपनी जगह जो जियां भूलना ही लगी पैंदे जे अभी के गाना घर घरे गिच करे के करना ग्रामा गिच करे के करना घर जे असें अभी बड़ा भारी दूर आता इतने दूर जे असें काओ गाना अक किस्मा लगाव जीना तियां जो जे असें घट बच गाँदा तो असको कोशिश करना चाहते जे अपने बच्चे जो जे असें बिच बिच माँ जेखने छुट्टी बुंदी इंदे खने ग्रां जो लेकर गाना चाहता जेड़े इंदे रीति रिवाज हैं सेतियां जो जरूर जे असें दसना चाहते हैं इंदे जेड़ा खान पान हा इंदा जेड़ा पहनावा हा हर चीज़ा रे ताएं जे असें तियां जो जानकारी देना चाहते हैं ताकि से भी जे असें इंदी ये सब पछैनी सीत जे असें जरूर रहन। तो जियां तुसो पता ही है जे असें इस कार्यक्रम में जे असें कसी ना कसी विषय पुठे गल करते हाँ तो अज असु गल करने हाँ अल्पसंख्यक रे कल्याण रे ताएं 15 सूत्री कार्यक्रम रे बारे में कने भारत रे विकास में युवाओं रा के योगदान हा इटेरे बारे में भी असु तुसु कने गल करने हाँ पर कार्यक्रम री शुरुआत करते हैं इस बढ़िया जिने लोकगीत कने।

जी अबे तुए शुणुआ बलदेव सांख्यांजरी भाकमा ए बदिया जिना लोकगीत तासु गल करने हाँ अल्पसंख्यका रह कल्याण रताएं 15 सूत्री कार्यक्रम रह बारे में। अल्पसंख्यका रह कल्याण रताएं 15 सूत्री कार्यक्रम जैसे अक जरूरी सरकारी पहल हा। इटेरा उद्देश्य जैसे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध पारसी ते जैन इया वंचित लोका जो जैसे समान अवसर देना हा। तैयारी सामाजिक ते आर्थिक विकास री जड़ी रक्षा हा इतियो करना हा। इस कार्यक्रम रे खास उद्देश्य जो 4 भागा मा जैसे बंडूरा हा जहाँ शैक्षणिक सशक्तिकरण रे जैसे गल करते हा ता इतमा जैसे शिक्षा रे अवसर जैसे तियाँ जो देना हा जियाँ प्री मैट्रिक हा मैट्रिक हा पोस्ट मैट्रिक हा ते मैट्रिक मा जैसे आधारित छात्रवृत्तियों रे माध्यम कने छात्रा री सहायता करना हा। आंगनवाड़ी सेवाओं रा जैसे विस्तार करना इतमा जैसे बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना प्रदान करना शामिल हा। फिर मदरसा रा शिक्षा इतमा जैसे खरी ते गुणवत्ता वाली शिक्षा जैसे मदरसों ते मकतबों मा जैसे गुणवत्ता सुधार इदे योजनाओं जो जैसे चलाना शामिल हा। आर्थिक ते व्यवसायिक अवसर जैसे गल करते हा ता इतमा जिया कौशल विकास हा दीनदयाल अंत्योदय योजना रे माध्यम कने कौशल प्रशिक्षण मतलब जड़ा स्किल ट्रेनिंग हा इतमा आजीविका रे अवसर जैसे देना शामिल हा। ऋण सुविधा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम रे ये जैसे स्वरोजगार ते व्यवसायों रहता है आसान ऋण जैसे तो सूद दिता गांदा हा। जीवन स्तर में जैसे सुधार करना बुनियादी ढांचा जैसे इतमा विकास करना जिया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रे अंदर अल्पसंख्यक बहुल इलाके में जैसे स्कूल हॉस्पिटल ते कौशल रहता है जैसे केंद्र सहूलत जैसे निर्माण करना। फिर असं इतमा गल करते हाँ जे आवास योजना जिया जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को जो आवास योजना राज्य से फायदा देना।

पाणी ते स्वच्छता री गल करन ता साफ पाणी ते स्वच्छता योजनाओं मां जिया से खरी भागीदारी भूना जिया से ए भी इतमा शामिल हा। ते जड़े भी सांप्रदायिक हिंसा री रोकथाम ते सभी समुदाय रे बीच भाईचारा हा एतियो जिया से बढ़ावा देना भी शामिल हा। समान अवसर री जिया से गल करते हा ता पुलिस ते सुरक्षा बला मां जिया से अल्पसंख्यकों री उचित ते निष्पक्ष भागीदारी जिया से शामिल हा। जीता एता थी केंद्र सरकार योजना असे उम्मीद कर दे हा जे ये योजना तुसु सभी लोका रे कम्मा जे असे जरूर इंदी भोली ते तुसे अपने अपने साबारी योजना चुने करे भारत जो होर भी अगू ले करे गाने मां जे असे अपना योगदान दीना भोले लगू रे। भारत सरकार जे असे टैमा टैमा पर जे असे नोई नोई स्कीमा बढ़ाते रहते हैं ताकि गरीब तबके लोग जे हैं से इं सभी योजनाओं कने जुड़े सकन ते पूरा फायदा जे असे इं स्कीमा रा ले सकन। बस थोड़े आक जे असे जागरूकता री कमी भूने री वजह था जे असे ये सारी योजनाएं दूर दराज इलाके मां जे असे थोड़ी घट जे हिन से पुजदी हिन पर असे कोशिश करते रहते हिन जे रेडियो रे माध्यम कने तुसु तकर ये जानकारी जिन से पुजे सकन। ते तुसे इत कने जुड़ने रा जे असे पूरा प्रयास भी करू करा ताकि तुसे अपनी आर्थिक स्थिति मां जे असे सुधार कर सका ते भारत रे विकास मां जे असे अपना होर भी ज़्यादा योगदान जे असे तुसे दे सका। ता असू होर भी मां जे असे थोड़े गल करनी है तुसी ते भारत रे विकास मां योगदान जे असे इंदे जड़े युवा हैं खास कर यारा के योगदान आ इटेरे बारे मां पर सुनदिया अखूर बदिया जिना लोक गीत।

તારા તાલાબમાં જે આસે કમલ રે ફૂલ પુર જે આસે શિશુ રૂપમાં પ્રકટ ભોગે થી હૈ એસ રોજે જે આસે કબીર પંથ તે મંદિરા તે આશ્રમામાં જે આસે ખાસ પ્રાર્થનાએ તે ભજન જે હિન સે ભૂંદે હિન કબીરજી રે ભજનમાં જે આસે શબદ તે સાખીરા જે આસે ગાયન ભૂંદા હા તા આસે જીતને બીંદે શૂનને વાળે હિન તિયા જો અકબરી ફિરી કબીર જયંતી જી રી બધાઈ દિંદે હિન ते असें उम्मीद करते हाँ जे असें जेड़ी भी स्कीम तुस सभी रे सामने लेकर ही इंदे आ ते जियां भी स्कीम रे बारे में असें तुसी ते गल करते हाँ तुसें इं स्कीम रा पूरा फायदा लैंदे भूले ते जागरूकता रे माध्यम कने जे असें आपूं तो जागरूक हुंदे ही भूले पर अपने नेड़े तेड़े वाले लोग जो भी जागरूक करते भूले क्यों कि असें जे असें इं कार्यक्रम जो सुनते हा पर जे असें इं कार्यक्रम जो सुनने थो बाद जे असें शनूरी जानकारी जो अगू लेकर गान ताई असें बली सकते हाँ जे इस कार्यक्रम जो सुनने रा तुंदा भी कोई फायदा पुआ हा ते जेड़े तुंदे नेड़े तेड़े रे लोग हिन तुंदे तुस सीते उठते बिछते हिन त्यारा कोई जे असें फायदा पुआ हा बते सारे लोग किदै बुंदे हिन जियां जो जेड़े इंदे खास करे पुराने बुजुर्ग हिन कि घट पढ़ूरे लिखूरे लोग हिन तियां जो जानकारी जे असें घट बुंदे हा ते जानकारी घट बुने री वजह थां से सोचदे न जे चलो इंदे जेड़ी पुरानी चीजां चलू रही हिन सही ठीक न ते तियां मां ही जे असें गुजारा करी लैना हा पर तियां जो पता नहीं है जे अबै जे असें भारत सरकार है इदी इदी स्कीमां चाहे असें आयुष्मान भारत री गल करी लैन जेड़ी इंदी स्वास्थ्य रताएं हाँ चाहे असें जीवन ज्योति बीमा योजना जेड़ी इंदी बीमा योजना हा यारी गल करन कौशल विकास योजना जेड़ी असु पढ़ाई लिखाई रताएं अवसर दिंदे हा आवास योजना जेड़ी असु घर जे असें दिंदे हा ता इतनी सारी योजना चलौरी हिन भारत सरकार है बस अक कमे हा ता जागरूकता रहा ता असु सभी जिने जे असें किठी करी जागरूकता रे माध्यम कने जे असें लोका तक ये जानकारी जे इनसे पुजानी हिन ते लोका जो दसना हा जे कुन कुन स्कीम जे असे तुस सभी रताएं जे हिन से भारत सरकार चलौरी हिन ते तुसे यारा जे असे फायदा ले सकते हिन ता ए थी इंदी अजारी गलबात ता चलते चलते सुन दिया कार्यक्रम रा आखरी लोक गीत उमा कौशल जी री भाकमा।

मंडियाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सबनिया जो पुष्पराजारी नमस्कार तादिक हमारा के भी कार्यक्रम आरा वक्त होया और ऐसे भी कार्यक्रम लेके हाजिर हुए गए तादिक हमारा की भी बरसात देखा शुरू होया कराई और कई जगह देखा भी बरखा जो सियों ब्यागा ते लग्या कराई और ये बेता देखा भी जेड़े बरसाती रे दिहाड़े ता माणुआ जो देखा भी काफ़ी सोची समझी के चलना चाहिए भी घर ते जे भी निकलो ता अपने हाथा जो से छत्र जो से छत्तू जरूर होना चाहिए कहने होर देखा भी आजकल तुसे देख दोगे कि भी जेड़े भी तौंदिया रे दिहाड़े सुकीरे नाले हुआ थे खड्डा हुआ थी ते तपर भी देखा भी काफ़ी पानी जो से बहंदा लग रहा हुआ ता एड़े पासे जो से माणुआ जो नहीं जाना चाहिए इस गलरा खास ध्यान जो से रखना चाहिए कि बरसाती रे दिहाड़े दिखा के थी लासे पई जाएँ कहने के थी देखा भी नाला खड्डा जो से हों काफ़ी बहाव जो से पानी अंदर हुआ ता एता पर जो से माणुआ जो काफ़ी ध्यान जो से देना चाहिए इन जगह ले जो से माणू दूर रहना चाहिए ता महाराज देखा भी आज जो से संत गुरु कबीरदास जयंती ही ता एता पर आज ऐसा थोड़ी जी गलबात भी तू ससा

आज कर रहते कि भी ना पढ़ी लिखी के क्या करना भी लोकारा घर था बस नहीं एड़ी एक मान्यता जो सियों कुछ माणू अरे हुआई थी ता इतना ते भी देखा हो बच्चियाँ जो नी पढ़ाते थे कहने साहुगी देखा भी कई बार जेडे स्कूल हुआते थी उठने बैठने री सुविधा जो से नहीं होंगी थी या फिर पीने रे पानी री या फिर शौचालय री सुविधा नहीं होंगी थी ता इतना कट्ठे भी कुछ बच्चे जो सियों स्कूला नहीं पढ़ते थे। पर इस जड़ा सर्व शिक्षा अभियान चलाए रहा इतारा उद्देश्य देखा भी यही आ कि भी किसी भी तरह ते जो 6 या 14 साल रे बच्चे सियों देखे भी शिक्षा से वंचित जो सियों नहीं रहने चाहिए ता इतना कट्ठे देखा भी हर गाँव मंज पंचायती अंदर देखा भी नेड़े नेड़े जो सियों स्कूल हो जेथी देखा भी बच्चे आराम से स्कूला जाई सको और अपनी पढ़ाई लिखाई जो सियों करी सको। कहने जेड़े स्कूल है ते तारा जड़ा ढांचा देखा भी से भी बढ़िया होना चाहिए स्कूला देखा भी बच्चा जो तौन दिया रे आही हुंदा रे ध्याड़े उठने बैठने री सुविधा जो से बढ़िया होनी चाहिए। कहने तीना जो पीने रे पानी री बढ़िया सुविधा हो कहने सौगी सौगी देखा भी शौचालय सुविधा जरूर होनी चाहिए ताकि देखा भी कोई भी बच्चा जो सियों पढ़ाई ते बगैर ना रहो। कहने इतना सौगी देखा भी जेड़े स्कूला मास्टर है सियों भी देखा भी बहन जी आई सियों भी देखा भी बढ़िया पढ़े लिखे हो होर तिनारा जरा स्वभाव हा से बच्चा कहने प्रेम प्यारा स्वभाव जो से होना चाहिए ताकि बढ़िया तरीके से बच्चे तिनाले डरो नहीं बल्कि तिना सौगी जो से बढ़िया शिक्षा तिनाले जो से ग्रहण करो। कहने इतना सौगी देखा महाराज की भी तुसे देखते हो कि भी हर प्रदेश या भारत मंज जो भी देखा पहली ते आठवीं तक करे बच्चे है तिना जो देखा मुफ्त शिक्षा जो से कितरी ताकि कोई भी देखा गरीब तबके रे परिवार हो सियों भी अपने बच्चे जो पढ़ाई सको तिनारा जड़ा किताबा का पियारा या बर्दियारा खर्चा देखा भी सियों सरकार बखले दीते जाएँ किताबा तिना जो सरकार बखले दीती जाएँ ताकि किसी भी तरह ते कोई भी बच्चा जो से शिक्षा ते ना रहो। कहने ये सौगी देखा महाराज के भी बच्चे जो दिहाड़े देखा भी भूख भी लगाएं ता इतना कट्ठे देखा मिड डे मील भी चलाई रहा ताकि देखा भी बच्चे जो से एक वक्तारा जो खाना जो से स्कूला पर ही मिलो और पौष्टिक आहार मिलो इतना कट्ठे बढ़िया बढ़िया जो जड़ा बच्चे रे स्वास्थ्य भी जो से बढ़िया बनी रहो ता इतना कट्ठे पौष्टिक आहार भी जो से सरकार बखले चलाई रहा ताकि कोई भी बच्चे जो से हों शिक्षा ले बगैर जो से ना रहो। तो देखा महाराज की भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और सबनी जो शिक्षा रा अधिकार है और सबनी बच्चे जो से शिक्षा हासिल करो ता कोई भी बच्चा किसी भी कारण ते जो से नहीं छूटना चाहिए ता इतना कट्ठे भारत सरकार बखले ये अभियान जो से चलाई रहा ता इतना देखा भी जरूर मानवा जो पूरा फायदा जो से लेना चाहिए ता इतना महाराज देखा भी थोड़ी जी गलबात हुईगी इवे जाते जाते एक बढ़िया जहा लोकगीत तुसा जो होर सुनाना लारा ता सुना तुसे लोकगीत।

पंगवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाली जी सभी जी नरेंद्र ठाकुर नमस्कार। आज पूरा देश संत कबीर जयंती मनाना को सा पूरे देश अंत जितने भी धार्मिक स्थल से तथा त संत कबीर है बड़े विश्व प्रसिद्ध जे दो ऐसे सबा जना को से तंके जय जन्मदिन सा बड़ा धूमधाम जो मनाने को सा बहुत ही महान और हिंदी साहित्य शिरोमणि जी शिखर पर थे कबीरदास हैं कि

थी। एंके गिनती चोटी जे भी कवि से महान कवि से तनिया तो पहले स्थान बैठे थे। संत कबीर एक समाज सुधारक थी, तनी समाज लिए बहुत सारे काम किए, खासकर अगर असत अंधविश्वास था अडंबर वगैरह जे कृतियाँ थी समाज तो तनी ख़त्म करना तो इनते पूरा संपूर्ण जीवन लाई छा। मैणु के कल्याणकारी जत भी काम से तनिया तो भी आपू बहुमूल्य योगदान दिया। कबीर पंथी एक धार्मिक समुदाय से जेके कबीर संत कबीर जत भी सिद्धांत शिक्षाएं से तनी आपू जीवन तो धारण के उसे और तनी पुठ आचरण करण उसे। संत कबीर दास जन्म हालांकि विभिन्न मत से जे तक अनुयायी थे तैके अनुसार कबीर संत कबीर जन्म का आशियाँ तो अख्तलाब आत कमल सुंदर फूल पुठे वो थे। कुछ मानु के ये मत सा कि संत कबीर तेरे सुस्तानु आत यख भी तो ब्राह्मणी को खत गर्भांत क्या से पैदा हो तैंके पालन पोषण नीरू नाम के एक जुलाइया था तन क्या। हालांकि नीरू जुलाइया जे था सता तो धनवान नहीं से कबीर जे किताबी रूपी विद्या थी तस देना तो असमर्थ थी। फिर भी संत कबीर जत भी दुए सुने जत भी ज्ञान वाली गल की से सिर्फ तैंके मुख उच्चारण क्या ही नहीं थे क्योंकि से पढ़े लिखे तो थे नहीं, जिस वजह जो से आपू जे उच्चारण थे तनी लिखित रूप न दे सके। हालांकि जो हो रहे तंके अन्यायी थे जो पढ़े लिखे थे तनी तंके जो उच्चारण थे जो दोए थे तनी लिखित रूप दत तंके। संत कबीर भी यख बैरागी कन्या जो हुआ तैसे दुए औलाद थी कमाल तक कमाली कमाल तंके शिष्य बने ता कमाली तंके शिष्य बने। हालांकि कई मत से कि हिंदू संत कबीर हिंदू मानते मुसलमान तनी मुसलमान मानते, जबकि अगर अस गहनता जो है ते तंके नौ कबीर दास थी तो दास है मतलब क्या काफ़ी सारे ऐसी तथ्य में थे कि से एक हिंदू थी महान कवि। तैंके मानना था कि हाथ तो माला नहीं कही जे मन के माला तो मुती तनी फैरते फैरते भगवान आता तो मन लग गया कि धीरे धीरे तनी मन की के कोई अर्थ न रह जाता और ईश्वर आता तैंके जे माला फहराना गुस्सा तसे अत ध्यान मगन हो गया था कि तनी मन जे संयम सा सह मैन शुरू बनता निरंतर ये कारण जो मन जैसा संयम रूपी धारणा तक गई जाता। तनी बोलू कि अगर कोई माली सा से अगर कैसे पौधे लगातार 100 घड़े पानी भी दिए छड़ाल तेरे पता तस पौधे पुट फूल तो था जिखें से ऋतु आती तसे फीड़ू के ऋतु आती तेरे पहले माली भी कुछ न कह सकता क्योंकि बोलना मतलब ये सब कि हर चीज़ एक वक्त होता तैसा वक्त हों से चीज़ फलती फूलती। कबीर जी कई समाज तो सुधार के ये तुझे गल बात की ऐसी तैंके दर्शाए हुए जो मार्ग से जो शिक्षा से जो सिद्धांत सा तस पर इंसान अमल करना चाहिए। कबीर जी मानते थे कि ईश्वर जो आराधना जो पूजा सी तस पर तनी जोर देता तनी बोलू कि ईश्वर नौ अलग अलग हो सकते पर परम सत्य या कैसा कि ईश्वर या कैसा तैसे नौ अलग अलग हो सकते। संत कबीर अडंबरे के विरोध किया तनी बोलू कि मूर्ति पूजा तीर्थ

यात्रा, कर्मकांड, जी जत भी धार्मिक से अनी चीजी तनी कड़ा विरोध किया। गुरु महत्व पर तनी बल देता कि जीवन अंत एक सच्चा गुरु जरूर भोचे। तनी जी तंके रामानंद जी थे, गुरु जे महिमा सी से सर्वोच्च सी। तनी ऐसा साहब जो मानवता और प्रेम में शिक्षा दी। तनी के शिक्षा तो अहम स्थान अंत एक चीज ये भी रहती कि इंसान अंत प्रेम तो सद्भावना बहुत बड़ी जरूरी सी। जैसे बजाय इंसान अंत एक और इंसान रहने एक नजरिया जैसा से समान बोलो चाहिए। सदाचार तो सादगी इंसान जीवन अंत बहुत जरूरी से। सादा जीवन जीने लिए तो मन जो पवित्रता सी से हमेशा अगर भी बनी रहना चाहिए। अहंकार त्याग देना चाहिए। ऐतत ही तंके बहुत सारी समाज लिए सिद्धांत शिक्षाएं। तंके दोहे बड़े विश्व प्रसिद्ध से। इंसान जिखे तंके दोहे सुनता था बहुत कुछ तैसे दिमाग आता चीज़ें हैं थी। और से कैसे भी अगर चीज आता एकागर न भोने बजाय यहाँ तक से अगर कबीरे दोहे सुनता तब बहुत एकाग्रता तथंत रहती। जी आई तंकी दोहा था, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। ऐसे बोलने मतलब ये था संत कबीरे कि असी कैसे भी साधु या जय ज्ञानी पुरुष सा तैसे जात ना पूछी धन ना पूछूं। जी अस को से तलवार खरीदन कहते तो तलवार धार तो तैसे गुणवत्ता है ना कि तैसे म्यान जथन तो तलवार रखते। हालांकि तैचो कोई मतलब नहीं होता। तैसे संत कबीर बोलना मतलब इस है कि असी जिस चीज़ ही जरूरत सी जो चीज़ असी चाहिए तस चीज़ जो मतलब रखें बगैर जिस चीज़ जो है कोई मतलब नहीं तो इस चीज़ जो कोई वास्तवन रखन। तेंगे बोलना मतलब सा ज्ञानी पुरुष क्या ज्ञान जरूर सीखे तुस पर तैसे जात और धर्म क्या कोई लेना देना न पहुँचे। इस पर तुस ये गलबात संत कबीर बारे तुस जारी रखते सुनते लोकगीत।

अथियु शांति बिष्ट वहाँ जनता लोकगीत आई से खास खास प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू बोलू कि जे प्रदेशी युवाएं से तंके लिए स्वरोजगार अवसर प्रदान कराने लिए राज्य सरकार है राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जे चौथा चरण से शुरू करने फैसला क्यों सा तनी शिमला तो बोलू कि ऐसी योजना तहत जे लाभार्थी युवा वर्ग से इलेक्ट्रिक बस खरीदन बट तनी 50% पूंजीगत जे सब्सिडी सी से सरकार तरफ में ही सी तठी अगर डीजल वाली बस कोई लाभार्थी खरीदता तस 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदेश सरकार देती और साथ साथ जे चिन्हित प्रदेश हत मार्ग से तनी मार्गी बठैनी बसों बसी के संचालन भूसा तनी बोलो कि लाभार्थी जे भी उम्मीदवार से तनी 5 वर्षों 35,000 रुपये डीजल वाली बस परिचालन अंत प्रोत्साहन राशि भी सरकार तरफ दें सी ही प्रधानमंत्री जे मन की बात करी तथंत तनी बोलू कि राष्ट्र निर्माण अंत जनता जैसी देश है तंके काफ़ी अहम भागीदारी रहती और साथ साथ तने प्रसन्नता जाहिर की कि जत विदेश अंत कोई कम होते तथंत जनता ही जाति से जाति भागीदारी असी से देश जिस तस नई ऊंचाई प्रदान करना तो बहुत मदद करती और तनी योगा दिवस अवसर पर बोलूँ कि पूरे देश अंतर 28,000 जगह अंतर योगा दिवस मनाया तनी बोलूँ कि जे देश नागरिक से तनी सरकार दुर्घटना बीमा दान लागू सी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कांग्रेस पर आरोप लाए कि कांग्रेस है कार्यकाल तो बहुत सारी समस्या प्रदेश आने लगू सी स्वास्थ्य सेवाएं

जिसी प्रदेश से बुरी तरह चरमराई गई सी, जबकि कांग्रेस दावा करते कि विश्व स्तरीय सुविधा असलियान लगो से, ऐसे तो बड़े बड़े दावे से पर हालात स्वास्थ्य संस्थान के कुछ और से, कई जगह लिफ्ट वगैरह खराब पड़ी हुई सी, जिस वजह जो मरीज पेट का ही क्या यख जगह क्या और जगह पर जान लगो से, ऐसा साहब जो जे आज स्वास्थ्य संस्थान हालात से बड़े बुरे से, ऐसा साहब जो तो कांग्रेस सरकार खुद यख वेंटिलेटर पर पूज गई सी, जैसा साहब जी स्वास्थ्य संस्थान अंतर जे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा भू चाहिए से काफ़ी असंतोषजनक सी, ऐसा थे खास खास समाचार गहते गहते अखरू लोग सुनते।

पंगवाली कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है लोकगीत, आइए सुनते हैं अमरनाथ शर्मा को।

लोकगीत अभी आपने सुने, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश की 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर में आज नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई। धर्मशाला और सोलन में कोरम पूरा न होने के कारण आज महापौर और उपमहापौर का चुनाव नहीं हो पाया। मंडी में कोरम पूरा होने पर भाजपा पार्षद सुमन ठाकुर को महापौर और जितेंद्र शर्मा को उपमहापौर चुना गया है। पालमपुर में भी कोरम पूरा होने पर महापौर व उपमहापौर का आज चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस पार्षद राधा सूद महापौर और नीलम मलिक उपमहापौर चुनी गई। धर्मशाला में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी नव निर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ दिलाई, लेकिन कोरम पूरा न होने पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव स्थगित किया गया। अब ये चुनाव 1 जुलाई को होगा।
1: कोरम की रिक्वायरमेंट 3/4 होती है टोटल आपके इलेक्टेड काउंसिलर। तो अभी फर्स्ट इंस्टेंस में वो कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम पूरा ना होने की वजह से अब आगे इसको नियमानुसार स्थगित किया गया है। हम दोबारा से एक समय तय करेंगे और उस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक व पूर्व

0: मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव टालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए। तो उस कारण जो है, अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि पहली तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफ़ी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपचार की बेहतर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंधों को बेहतर बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नव निर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झगटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ चल रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और करोड़ों परिवारों को पक्का घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, बैंक खाते, नल से जल और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी शिमला से लीजिए पेश है महास्पी कार्यक्रम।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के सुनीला भारद्वाज जरा नमस्कार। श्रोताओं तो सबीरा बहुत बहुत स्वागत है अपने आज के महास्वी कार्यक्रम में। कार्यक्रमारी शुरुआत करूंगे आज के कार्यक्रमारी रूपरेखा साथी। आज कार्यक्रमारी जो मुख्य विषय स्वस्थ जीवन और शाकाहार ये जी साथी मत स्वा जानकारी देनी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रे बारे में। साथी साथी तो है देश प्रदेश कुछ खास खास खबर भी सुनावनिया, पर सभी दे पहले सुनो तुसे लोकगीत।

श्रोताओं पूरनचंद और निकी राम जिरियावाजत सुनिया से शिव भजन। स्वस्थ जीवनारा सीधा संबंध सही खान पान और अच्छी दिनचर्या दी। विज्ञाना रे अनुसार शाकाहारा दी विटामिन फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा दियो, जो हृदय रोग यानी कि दिला दे जुड़ी बीमारियां और मधुमेह जड़ी गंभीर बीमारियां दे बचाओ। जो भोजन पौध्या दे मिलो तिदे कोलेस्ट्रॉल कम हो और विटामिन और खनिजारी मात्रा ज़्यादा हो, जिदे जो फाइबर और पोषक तत्व हमारे शरीर के भरपूर मात्रा दे मिलो। नियमित और संतुलित शाकाहारी खाना दिलारी बीमारियां मधुमेह और मोटापे जड़ी समस्या के रे खतरे के कम करो। आज के वक्ता दे आसा के जितनी भी बीमारियां होने लग रही सभी दे बड़ा कारण जो है मोटापा, क्योंकि आ सारी जो दिनचर्या बदलती चल रही, जो आसे अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देऊँ, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देऊँ, आसे किथी ना किथी जो आसा हमें लो आसे खाई लूँ, कई बार समय रा अभाव या कई बार आसारा जो अपना ही लालच भी हो खाने रा या किस केड़ी भी परिस्थिति सको, पर कारण क्या है कि आसा मोटापा आ जाओ और तिस मोटापे की वजह से आसा के उच्च रक्तचाप जड़ी बीमारियाँ है ना।

2027 ना ऐ जैसा 100 फरवरी महीने ना जैसा तारीख का दिन ही दी सी अगर सब कुछ ठीक रहू। और पहले चरण ना मुख्य रूप ना मकान सूचीकरण होना, मकान की स्थिति, परिवार की सुविधा, उन जैसा 30 या 30 प्रश्न जुड़े देसी ते पूछने मकान मालिक ना, मकान की स्थिति, मकान की दीवारा, छत, फर्श, कंड तरह मिट्टी रसा, सा पक्का सा, कंक्रीट सा, ईंटा संग बनू सा, ते तमाम जानकारी देनी चाहिए। और मकान का इस्तेमाल आवासीय तई सा या दुकान तई सा या कार्यालय तई सा या कौसी होरी कोमरे तई सा, ये सारा विवरण उइना एजा सा। और पीने रे पानी रा मुख्य स्रोत की सा, बिजली, शौचालय, रसोई घर की स्थिति कंडी सा, और संगे परिवार ने मौजूद साधन, साइकिल, स्कूटर, कार, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की जानकारी भी देनी लाजमी सा। अब स्वगणना तो कोम तो हुआ, देखा जी गल एजा सा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अस दिनी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहा सा, एक कौसी संग है कोई भी उइरा तब्दीच नहीं करी सकता थी, ये सारा डाटा जैसा महफूज रहना, बल्कि सरकार आए वक्ता ने कल्याणकारी नीति और योजना बनाने ती है ए जैसे इस्तेमाल होना। तो देखा जी ए थी बड़ी जरूरी जानकारी, तो शुरुआत ना सा भावा रूपी है एक नाटी छुननी, तो लिया जी महाराज इस लाठी का मजा।

कार्यालय कोम का जाना आंद्रे की पौकदा लागा सा। तुरी जानकारी हर माणु बेधड़क बेझिझक होइया ले ही सका सा। और सो भी जै दिन सो प्रपत्र प्रश्न पूछना रा प्रपत्र दायर केरू तो हर विभाग ने जोखे सो सवाल जुड़ू दसा तो कले सूचना जे अधिकारी सा तेरी जिम्मेवारी हो सा 30 दिहाड़े ने सो प्रश्न रा जवाब प्रतिलिपियां सत्यापित केरिया सो मिली लोड़ी। भारत देश री संसद रे जरिए पारित एक से ऐतिहासिक कानून सा है जुन की तमाम नागरिका पे सरकार और सरकारी संस्थाना संगे अपने सवाल पूछने और संगे जानकारी हासिल करने की खातिर एक कानूनी तौर तरीके संगे जुड़िया एक हक भी दिया सा हर नागरिका पे। यह हर एक गला वे जानी पहचानी चका सा कि कोम जैसा सुचिता शुद्धता संगे सही ढंग संगे चालू दसा सो सा कोम सही होला चाहे माड़ा होला सब चीज़ा सामने एनी। यानी कि आखिरकार संस्थाना भीतरे चलदा की लागा सा आसे जानी सका सी और ताकि अपनी तसल्ली री खातिर और देश रे कल्याण री खातिर जानकारी संगे अवगत रो ही सकूं। इंडा कानून भी बोला सी आरटीआई यानी सूचना रा अधिकार अधिनियम 2005 उरे तहत जानकारी लेने जानिया एक मकसद हर नागरिका रा ऐ रो आसा जे एक पारदर्शिता तहत तमाम सरकारी महकमे भीतरे होनु आए कामकाज भीतरे जनता रे आमने सामने एक साफ सुथरी सही सही जानकारी री तस्वीर जी सके। और ये अधिनियम बनने ने बाद सभी कार्यालय अधिकारी री एक जवाबदेही भी बनी नहीं तो कौन पूछण वाला कौन कानूआ कौन है ना लेणुआ सौ गल साबित हुआ थी। पर एबे 2015 बाद जब अधिनियम बनू बोला भाई जे का उपयोग उस बार अभी नहीं की सका सा तो जवाब दे ही देश और समाज प्रति और भ्रष्टाचार प्रति लगाम लाने रे सरकारी विभाग ने जनता रे प्रति जवाब दे ही बनिया रो है। बाबू तो तब नहीं तो तब तो मालिक बना सी ना किछ एक बहुजे अधिकारी अपने देश की आन बान और शान और अपनी कर्मचारी अपनी नित नियम संगे जे सरकार आ सब मान दिया दिया सा हर सुख सुविधा कर्मचारी पर दिया सा तो सारी चीज़ें जो आ सभी अपने जिम्मेवारी संगे कोम के रहा हूँ। सशक्तिकरण यही अधिनियम बनने ने बाद यानी नागरिका वह लोकतंत्र ना मजबूती जागरूकता बनिया रोई बरकरार है ना जी। और सूचना रे अधिकारा भीतरे शामिल एक माणू की करी सका सा भाई हरेक माणू कोसी भी सरकारी कोम काजाना दस्तावेज रिकॉर्ड जांच पड़ताल करी सका सा बेझिझक बेधड़क दस्तावेजा रा रिकॉर्ड रा एक प्रमाणीकरण खातिर जैसा प्रतियां रा नोट्स भी ले सका सा और सामग्री रे प्रमाणित नमूने भी ले सका सा प्रिंट आउट हुआ डिस्क फ्लॉपी टेप यानी कोसी भी बांकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक रूपाना जानकारी हासिल करी सका सा। एवे गले जा सा भाई उन्हीं ना सूचना रे अधिकार अधिनियम 2015 रे तहत आसे आवेदन कंड तर करी सका सी। आवेदन के नहीं थी साफ सीधी गल से आवेदन पत्र आसे एक आम सादे कागजा पेंदे हिंदी ना हो अंग्रेजी ना हो या अपनी स्थानीय भाषा ने भी आसे जाहिर करी सका सी सवाल लिखिया आवेदन दाखिल करी सका सी। कई जगह ता ऑनलाइन पोर्टल भी एबे बने देसी एबे कुणी वे भेजना सा है ऐ प्रपत्र तो बनाऊ कुणी वे भेजना भाई अपना झंडा से ढूंढू जा अपना आवेदन जे सवाल जस विभाग संग है सरकारी विभाग संग जुड़ू दसा या पानी रे महकमे संग सगा या बिजली रे महकमे संग सा या शिक्षा रे महकमे संग सा तो जुड़ू दसा ता तेई विभाग रे हरेक विभाग ने जैसा लोक सूचना अधिकारी बनाया देसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जुड़े PIO बोला सी संबोधित केरना तेई वे तो सौ जट के दे जैसा तो ही ना जैसे 10 रुपये री पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट नकद भी दे सका सी। फीस दे मान हुआ सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनकी फीस रो आसा दफ्तरा ना ता ए गल जैसा साफ सा जे गरीबी री रेखा ना इठे जो गुजर बासुर केरन वाले सी तू ही ते भाई तीना परिवार वैसा फीस देने ना 10 रुपये देने ने भी जैसे माफ़ी रखी सा।

खास करी तिन्ना भाई बीपीएल परिवार और जवाब मिलने री जैसा समय सीमा भी निर्धारित था। जिस दिन से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जैसा सो ये अधिकारी रे औथाना ए प्रपत्र पौ तो आमतौर पर अपना आवेदन जमा किए रे 30 दिहाड़े भीतर सूचना मिलना रहा कोम पूरा जरूरी हो सा ता मौंगी दी जानकारी कौसी विमान उड़ी जिंदगी रा हो जुड़ी दियो या आज़ादी संग जुड़ी दियो या ते सब 48 घंटे बीते छिक ने छिक है दो ही दिहाड़े भीतर भी लाजमी केरी दिनी सा और सूचना रे अधिकारा भीतर क्या क्या जानकारी मिलती नहीं आती। अब कि छेक चीज़ें भी रखी सी हर एक चीज़ा नहीं तो कि छेक चीज़ा रोकी दी सी सौ रोकी सी दे शरी एकता संप्रभुता फाजत राजनीतिक हित बहिर्दय देश विदेश संगे जुड़े दे रिश्ते नाते नुकसान पूजन आई तमाम जानकारी जो देश है नुकसान पूजा सा ते जानकारी गोपनीय दस्तावेज हुआ खुफिया ब्यूरो जंडे रिसर्च एनालिसिस विंग रॉरी गुप्त जानकारी नहीं मुंगी सकते आती ते इन्होंने पेंदे बंदिश देशी तेरी खातिर। तो देखा जी ए थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 सो आसे जानकारी ले भाई ये कानून तो बने सी ये किताबा रौलत नहीं ताकत नहीं आती ये आगे जरा जरूरत के मुताबिक आसे इनरा इस्तेमाल कर रहा हूँ तब अपनी शक्ति और ताकत दसी दिया सी जरूर। तो देखा जी अगला लोकगीत आसा एक सुनना दुनी चंद्रे वादन जेठा शाड़े लम्बे दिहाड़े

जी ये धुनी चंदोरा तो गल लानी आसाज है बेटी की पढ़ाई कितनी जरूरी सा देश और समाज की तरक्की तई समाज और देश की तरक्की की खातिर बेटड़ी यानी तमाम बेटड़ी की पढ़ाई लिखाई बड़ी लाजमी हुआ सा। ते वे एक शुरू पढ़ू दुआ सा ता से बोलो से एक मानू पढ़ू दुआ सा पर जब एक शोरी पढ़ी दिया।

मां बचेरी एक पहली पहल शिक्षक हुआ सा तो एंड किरदे भी मां पौड़ी लिखी दी होली तो अपने बाल बच्चे पे शुभले शुभले संस्कार और नैतिक पाठ पढ़ाया शिक्षरी जैसा अहमियत दसिया तीन वह अपने पैरा पंदे और समाजरी और देशरी उन्नति तई जैसा आगे वह लाई सका सा। तो देखा दी यह थी गलबात तो प्रदेशरी नमिता जी खबरा भी आई दी सी देश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज सोच के जैसा राष्ट्रपति भवन ना इस साल रे दूजे रक्षा अलंकरण समारोह वीरता पुरस्कार प्रदान करी दी ने यही मौके पर राष्ट्रपति सशस्त्र बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश रे पुलिस कर्मी री वीरता पुरस्कार दीने ये पुरस्कार नुख है नवी बहादुरी रा कोम प्रदर्शन के वाले जैसा सैनिका पर दिया जा सी असमान देश री आतंकवाद असंग जुड़े दे और उग्रवाद और सीमावर्ती इलाके ने चुनौती के खिलाफ लगातार लड़ाई के तई दर्शा सी और संगे विमानन समुद्री अभियान और मानवीय मिशन रियाणु वाले नौखी नौवीं बहादुरी रो कौम मान्यता दिया सा और उन्हें पहले राष्ट्रपति रो यही महीने रे 8 तारीख का पहले राष्ट्रपति भवन रक्षा अलंकरण समारोह रे पहले चरण ना वीरता पुरस्कार भी दीने थी। अगली खबर जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और ढूंढ भाई नौजवान अब स्वरोजगार रे मौके प्रदान करने थी प्रदेश सरकार राजीव गांधी स्टार्टअप योजना रा चौथा चरण शुरू करने का फैसला लेऊ और मुख्यमंत्री ढूंढ भाई जैसा योजना के तहत पात्र मुफाद लेने वाले इलेक्ट्रॉनिक बस हरी खरीदा पैदा जैसा 50% और डीजल बस पैदा खरीदा पैदा 30% पूंजीगत सब्सिडी देनी सा और मुख्यमंत्री आगे भी ढूंढ प्रदेश ना चीनी ते 1000 जे मार्ग ना इन बस का संचालन होना सा और आगे तीन ढूंढ योजना के तहत लाभार्थी वे इलेक्ट्रिक बस रहती हैं 5 वर्ष तक जैसा

ने जैसा ढूंढू तो महापौर और उपमहापौर वाले चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेसी पार्षद मौजूद नहीं थे और कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो पा हुआ थी। तो देखा जी ए थी प्रदेश की खास खास खबर आखिर ने जाते जाते आसा लामणा रा स्ट्राल लेना और ये लामड़ लाँद लागे सी होतम सिंह होरा तो होतम राम होरा तो लिया जी महाराज सुनिए।

देखा जी, आज ये होतम सिंह और स्टारा सिंह है कुलवी कार्यक्रम वक्त हुआ। डॉक्टर घनश्याम सोनी विद्या इजाजत, नमस्कार।

0: कुल्लवी कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: तय करेंगे और उस तय समय पर दोबारा से सिंपल मेजोरिटी के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे।
1: दूसरी ओर भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव टालने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद रहे लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने जानबूझकर बैठक में भाग नहीं लिया।
2: भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 पार्षद अंदर मौजूद थे लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं वो नहीं आए, तो उस कारण जो है अब चुनाव जो है वो जिस तरह से एक्ट कहता है कि पहली तारीख को 3 बजे का समय इसका तय हुआ है, दूसरे में जो नंबर होगा मेजोरिटी उसमें ही चुनाव हो जाएगा।
1: उधर सोलन में भी उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नव निर्वाचित पार्षदों को आज शपथ दिलाई लेकिन कोरम। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की रावीम पंचायत में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने खंड विकास समिति जुब्बल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश झगटा और अन्य सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि खंड विकास समिति जुब्बल की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है जबकि जिला परिषद की 3 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए इस वर्ष 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों का तेजी से निपटारा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में अनियमितता बरतने और पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली धनराशि का लाभ अपने चहेतों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होने के बाद निरस्त कर दिया। ये टेंडर गाहरा लोहारड़ा सड़क के निर्माण के लिए जारी किया गया था। राजेंद्र राणा ने बताया कि वर्ष 2020-21 में उनके कार्यकाल की विधायक प्राथमिकता से नाबार्ड में स्वीकृत पुआड़ दरली सड़क की लोकेशन बदल दी गई है जिससे मूल लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि सुजानपुर सर्किट हाउस में रेलिंग निर्माण को लेकर भी अनियमितता बरती गई है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद टेंडर जारी किया गया जो नियमों के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने इन मामलों की विजिलेंस जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किन्नौर जिला प्रशासन ने खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होनी थी लेकिन प्रशासन ने कहा कि मौसम व मार्ग की स्थिति में सुधार के बाद ही किन्नर कैलाश यात्रा करवाने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर देव समाज ने प्रशासन से धार्मिक व पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का हवाला देकर इस यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए किन्नौर जिला में कड़छम बांध प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर आज रात 8 बजे से नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन व बांध प्रबंधन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतलुज के किनारे न जाने और सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आज शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ चल रही हैं। लाहौल स्पीति जिला के

0: जहालमा नाले में आज अचानक बाढ़ आने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिला में तेज धूप के कारण ग्लेशियर पिघलन से ये बाढ़ आई है। पानी के तेज बहाव से सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और मनाली उदयपुर व पांगी किलाड़ सड़कें भी बंद हो गई हैं। क्षेत्र के लोगों ने सरकार व प्रशासन से सड़क संपर्क बहाल करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों पर 30% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। मंडी और पालमपुर नगर निगम में आज हुआ महापौर व उपमहापौर का चुनाव। सोलन व धर्मशाला में कोरम पूरा न होने के कारण चुनाव स्थगित। भाजपा ने राज्य सरकार पर महापौर व उपमहापौर के चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और खराब मौसम व यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल स्थगित रखने का लिया निर्णय। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अम्ब के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने के लिए 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर दिनांक 10 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वही महिला उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु आवेदन करने योग्य होगी जो इन शर्तों को पूरा करती हो। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार, तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अम्ब के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2026 समय शाम 5 तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके बाद किसी भी आवेदक अभ्यर्थी से आवेदन दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार वाले दिन दिनांक 15 जुलाई 2026 को सुबह 10 समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अम्ब के कार्यालय में उपस्थित होना है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, संबंधित पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका से संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हम आकाशवाणी एफएम शिमला पर लेकर ढेर सारे तराने, कुछ नए तो कुछ पुराने। होंगी यहाँ आपसे ढेर सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। लेकर आए हैं आप सभी के लिए हम कुछ गीत, कुछ नगमे, जहाँ आपके दिल की आवाज़ को भी पहुँचाएंगे हम आपके अपनों तक। गजलों से सजा गुलदस्ता भी लाए हैं हम आप सभी के लिए और सदाबहार नगमे कार्यक्रम में कुछ खास गीत लाए हैं आप सभी के लिए। तो आइए दीजिए साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर, जहां हम और आप मिलके तय करेंगे ये सुहाना सा सफर अब से लेकर रात्रि ठीक 11:10 तक। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रेखा ठाकुर। एक बार फिर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जून का महीना जाने को है, जुलाई का महीना आने को है। यूं ही दिन पल गुजर जाते हैं, कब साल निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन हर दिन आता है जिंदगी में बहुत सी उम्मीदों के साथ, बहुत सी खुशियों के साथ। कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जनाब ये जिंदगी है, जो देती है इसे लेना ही पड़ता है, तो क्यों ना हंस कर लिया जाए। तो आप भी हर परिस्थिति में रखिए अपना ख्याल, हमेशा मुस्कुराते रहिए, डट कर कीजिए सामना हर पल का, खुशियों का स्वागत कीजिए। और यदि कभी कोई ऐसा पल आए जिसे आप नहीं चाहते हैं तो डट कर उसका सामना कीजिए। फिलहाल आइए आज के इस सुहाने से सफर का आगाज हम कर रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के साथ। आइए पेश है आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये पहला नगमा। सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल है हसरत जयपुरी के, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

थानेदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। पेश कर रहे हैं अगला गीत आप सभी के लिए सावन की घटा फिल्म से। मोहम्मद रफी को लीजिए सुनिए।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। पेश कर रहे हैं आप सभी के लिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में चोरी चोरी फिल्म का ये नगमा।

अब बेहतरीन नगमों का आनंद आप ले रहे हैं हमारे साथ। आइए कार्यक्रम में अगला गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हरियाली और रास्ता फिल्म से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, गीत के बोल है शैलेंद्र के और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम के अंत में एक और प्यारा सा गीत पेश है आप सभी के लिए, लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनते हैं असली नकली फिल्म का ये गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के और संगीत शंकर।

इसी प्यारे से गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पेश करते हैं आप सभी के लिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम करने जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में आइए सुनते हैं गीत के बोल अनवर सागर के और संगीत नदीम श्रवण का।

बिल्कुल किसी को चाहते रहना कहाँ खाता है, क्योंकि ये दिल है जना और दिल कहाँ कब किसकी सुनता है। सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत आकाशवाणी FM शिमला पर। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए माशूक फिल्म का। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को लीजिए सुनिए।

संगीत का जादू कुछ ऐसा ही है जो सीधा दिल से गुजर कर रूह तक पहुंच जाता है। सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत आकाशवाणी FM शिमला पर। सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आइए सुनाते हैं आप सभी को चांदनी फिल्म का एक बेहतरीन सा नगमा। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत शिवहरी का।

0: सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला। और रात्रि के 8:45 होने को है। जी हाँ, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के

0: किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है।

0: प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
2: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर से 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। दिल से भी इंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन किस्मत उनके रास्ते में एक ऐसा मोड़ लाती है जो उनके प्यार की हर कसौटी पर परीक्षा लेती है।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। एक फिल्म से कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रेखा ठाकुर।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर, जहां हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक फिल्म से कार्यक्रम। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में, जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा हुआ करता था। ये कहानी है दो दिलों की, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन किस्मत उनके रास्ते में ऐसे मोड़ लाती है जो उनके प्यार की हर कसौटी पर परीक्षा लेती है। जी हाँ, मधुर संगीत, भावनाओं से भरे संवाद और शानदार अभिनय से सजी ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। आइए प्यार, विश्वास और संघर्ष की इस खूबसूरत दास्तां मेरे हमदम मेरे दोस्त की दुनिया में कदम रखते हैं।

0: चल का जा।
1: दोस्तों, इस गीत की बात ही क्या है, ये हमारे भी दिल के खास है। और धर्मेंद्र का तो भाई कहना ही क्या है। अगर आपने देखा होगा तो धर्मेंद्र खुद भी इस गीत को बहुत पसंद करते थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने सुनील का किरदार निभाया। अपने शानदार अभिनय और गंभीर भाव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से उन्होंने इस किरदार को जीवंत बना दिया था। रोमांटिक और भावनात्मक दृश्यों से उनकी सहज अदाकारी ने दर्शकों के जो है वो दिल जीत लिया था। मेरे हमदम, मेरे दोस्त धर्मेंद्र जी के करियर की उन यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है जिसने उन्हें एक सफल और रोमांटिक अभिनेता के रूप में भी उभर कर सबके सामने लाया था। साथ ही बात करें शर्मिला टैगोर जी की तो भाई क्या कहना, अनीता का किरदार निभाया है उन्होंने बहुत खूबी से। उन्होंने अपनी खूबसूरती, सादगी और बेहतरीन अभिनय से इस भूमिका को बेहद प्रभावशाली बनाया। फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार प्रेम, त्याग और भावनाओं से भरपूर है। धर्मेंद्र जी के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और मेरे हमदम मेरे दोस्त उनकी यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है।

को छू जाने वाले इस फिल्म के गीत, जी हाँ, गीतों ने फिल्म को अमर बना दिया। फिल्म का संगीत महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जबकि गीतों को मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। इन गीतों को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे महान गायकों ने उसमें अपनी आवाज़ दी थी।

दोस्तों, फिल्म की कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जो कई जिंदगियों को बदल देती है। एक अपराध के कारण एक परिवार बिखर जाता है और एक मासूम बच्चे का बचपन संघर्षों से बीतने लगता है। ये बच्चा बड़ा बनकर बनता है सुनील यानी कि धर्मेंद्र, जो अपनी माँ और

के साथ सादगी भरा जीवन जीता है। यही एक दिन सुनील की मुलाकात होती है एक खूबसूरत और सरल स्वभाव की लड़की से, जिसका नाम है अनीता, यानी कि शर्मिला टैगोर। पहली ही मुलाकात में धीरे धीरे दोस्ती में बनती है और दोस्ती से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ सुनील को लगता है कि अनीता भी उसी की तरह एक साधारण परिवार से है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि अनीता एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की बेटी है। ये सच जानकर उसका विश्वास जो है वो टूट जाता है और वो अनीता से दूर होने का फैसला कर लेता है।

दोस्तों कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सुनील को ये पता चलता है कि अनीता के परिवार का संबंध उसके अपने दुखद अतीत से जुड़ा हुआ है। पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और सुनील के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वे अपने प्यार को अपनाएं या अतीत की कड़वी यादों को।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में सादगी, दमदार अभिनय और सच्ची भावनाओं की यदि बात की जाए ना, तो धर्मेंद्र जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपनी मुस्कान, अभिनय और व्यक्तित्व से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया है, और यही वजह है कि उन्हें आज भी हिंदी सिनेमा का ही मैन कहा जाता है।

0: है कि अब किसे अपनाएं, अनीता को या अपनी पुरानी यादों को। अनीता अपने प्यार और विश्वास को साबित करने की हर संभव कोशिश करती है। वो ये समझाने का प्रयास करती है कि किसी व्यक्ति को उसके परिवार के अतीत से नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों से परखा जाना चाहिए। और आखिरकार सुनील को एहसास होता है कि सच्चा प्यार किसी की नफरत, गलतफहमी और अतीत की कड़वाहट से बड़ा होता है। वो अनीता को अपना लेता है और दोनों की प्रेम की जीत होती है।
1: बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन।
0: जी हाँ दोस्तों, मेरे हमदम मेरे दोस्त केवल फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई, हर गलतफहमी और हर परीक्षा को पार कर सकता है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की शानदार अदाकारी और मधुर संगीत ने इस फिल्म को सदाबहार बना दिया।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। और अब एफएम शिमला पर समय हो चला है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आपका इंतज़ार करते हैं ख़त्म, क्योंकि लेकर हाजिर हो चुके हैं हम प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन। तो दोस्तों, आपके दिल की आवाज़ आपके अपनों तक पहुंचाएंगे हम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। तो हो जाइए तैयार हमारे संग चलने के लिए एक सुहाने से सफ़र पर। कीजिए हमें ईमेल और सुनिए अपनी पसंद के गीत AIRFMShimla@gmail.com पर। जल्दी से भेजिए ईमेल फिल्मों के नाम के साथ। और आज की हमारी फिल्में कौन कौन सी है सुन लीजिए, लिख लीजिए। आज की फिल्में हैं पत्थर के सनम, मिलन, आराधना और इज्जत। इज्जत, आराधना, पत्थर के सनम और मिलन। भेजिए अपनी प्यारी प्यारी ईमेल्स और सुनिए अपने प्यारे प्यारे नाम के साथ, अपनी फरमाइश के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।

आगाज कर रहे हैं कुछ ईमेल्स के साथ कार्यक्रम का। ईमेल पहुंची है, भेजने वाले हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। आप सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का नगमा। सहारनपुर से ईमेल आई है, भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। कार्यक्रम में कोई सा भी गाना शामिल कर दीजिए, बिल्कुल सुनाएंगे एक आपको प्यारा सा नगमा। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। उत्तर प्रदेश से आपकी ईमेल हम तक आई है। आप ही के साथ हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का नगमा।

थाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्या बाठे, आपका भी स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम में। एल आर गुंजेटा, जमिता गुंजेटा, अनुज मुकुल गुंजेटा, छुपाहड़ी रोहड़ू से हमें ईमेल कर रहे हैं, पत्थर के सनम फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे जी आपको भी आपकी पसंद का गीत। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने हमें ईमेल भेजी है। ईमेल्स और भी आई हैं, आइए शामिल करते हैं। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल, आप हमें खंडवा से जो है अपनी ईमेल भेज रहे हैं। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का गीत। ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल, नूर महल महसौल, सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां नाज, तलहत जहां नाज, फरहत जहां, रिफत और नुजहत, साजिया शाइन, जी हाँ शाहिन नाज, नाजिया नूरी। और आप सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। आप ही के साथ ईमेल्स आई है, भेजने वाले हैं अमरावती से हीरामन शिंदे और सिद्धार्थ गुंडा ने। चलिए गीत अब आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक ईमेल शामिल करते हैं, भेजने वाले हैं महाराष्ट्र से विजय सुरकर, रतनमाला आराध्या सुरकर और कुमकुम। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं आप सभी को मिलन फिल्म का गीत। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए।

राजेंद्र नारंग जी हाँ, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, आप सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोवत, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत और कीरत रेहान इनके साथ कार्यक्रम में शामिल है। और ईमेल हम तक आई है, भेजने वाले हैं समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशन खान, रज़ाक मोहम्मद।

इनके साथ जो है वो शामिल है दरियापुर बावली से गजानन ये ले सुशील ये ले, अंकोला से आदित्य दामोदर और अरुणा दामोदर। पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, पत्थर के सनम ही फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। ओम रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। बिल्कुल सुनाएंगे आपको भी आपकी पसंद का गीत। मजनू काटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। पानीपत से नरेश मल्होत्रा निट्टू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का। रायगढ़ से ईमेल कर रहे हैं, भेजने वाले हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। पत्थर के ही सनम फिल्म के लिए लगातार हमारे पास जो है वो ईमेल्स आ रही है। और जी हाँ, प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार, इज्जत फिल्म का गीत आप कार्यक्रम में सुनना चाहते थे, सुनवाएंगे आपको भी हम इज्जत फिल्म का गीत। और आप ही के साथ बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। उत्तम नगर दिल्ली से आपने जो है हमें ईमेल भेजी है, इरशाद अहमद, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब। ईमेल आई है, भेजने वाले हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर। स्वागत करते हैं हम अपने तमाम लिसनर्स का जो इस वक्त हमें ईमेल्स कर रहे हैं और जो हम ईमेल नहीं भी कर रहे हैं लेकिन पूरे दिल से सुन रहे हैं एफएम शिमला। मुल्तानी ठांडा से अनिल कुमार, उषा चौहान, जी हाँ उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। कुछ ईमेल्स लगातार बार बार भी आती है, कोशिश रहती है कि सभी दोस्तों के नाम जो है वो उसमें हम शामिल कर सकें। अमरावती से हीरामन शिंदे, सिद्धार्थ गोंडा ने आपका ईमेल हम शामिल कर चुके हैं। और आइए अब आप सभी को सुना रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत। बल करण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बांछोर, छत्तीसगढ़ से आपकी ईमेल शामिल हुई है कार्यक्रम में।

जी बिल्कुल, महबूब की तरह ये गीत संगीत भी है। ये है तो दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हसी है। तहसील सुन्नी से हमें ईमेल आई है, भेजने वाले हैं डोला राम, सुमित्रा, ईश्वर और दीक्षित। कुलदीप सिंह हमें जो है इनके साथ ईमेल कर रहे हैं। तहसील नरसिंहगढ़, जी हाँ राजगढ़ से हमें ईमेल आई है गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। आप जी हाँ रमेश चंद्र डांगी लिखकर हमें भेज रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का नगमा। सुनवाएंगे हम आपको भी ज़रूर। जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, जयपाल यादव, दिलीप रामेकर भी जो है वो शामिल हुए हैं। कह रहे हैं कि इनकी मेल आई है लेकिन शामिल नहीं हो पाई है। दोस्त शामिल कर रहे हैं, आप अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना, एस के पप्पी, ग्वालियर से आपने हम तक ईमेल भेजी है। पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा आराधना फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। कालरी से ईमेल कर रहे हैं, भेजने वाले हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सदोहर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंद्री लहरे। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और आराधना फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। सहारनपुर से मेल भेजी है। कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार आराधना फिल्म का गीत ये भी सुनना चाहते हैं। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अर्षा जी हाँ अक्षय रामेकर, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं एफएम शिमला पर। ईमेल आई है, भेजने वाले हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। रतनलाम एमपी से ईमेल कर रहे हैं जगदीश, जिनके साथ कार्यक्रम में शामिल है के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, भाटापारा से ईमेल भेजी है। ईमेल आई है श्रोता, जी हाँ जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, दोस्त आपकी ईमेल हम कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। लखनपाल रंधावा, परमिंदर सिंह, कुछ ईमेल्स लगातार बार बार आती है, कोशिश रहती है नई ईमेल को जो है वो शामिल कर सके। महाराष्ट्र से पीएस नवांकर, निर्मला नवांकर, विशाल, नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आयुष और आपके साथ और भी दोस्त शामिल हैं कार्यक्रम में। जी हाँ ईमेल आई है, भेजने वाले हैं अंजू श्रीवास्तव, भारत भूषण, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष की। हरियाणा से ईमेल आई है, भेजने वाले हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, दारा पंडित, मिलन फिल्म का गीत सुनना चाहते थे हरियाणा से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया उत्तर प्रदेश से, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और उत्तर प्रदेश से इन्होंने हम तक जो है वो ईमेल भेजी है। बहुत दूर दूर बैठे दोस्त हमें इस वक्त सुन रहे होते हैं और हम भी

फिल्म के साथ साथ कुछ दोस्त हमारे जो है वो गीत के बोल लिखकर भी भेजते हैं, तो लीजिए अपनी पसंद का गीत सुनिए और आनंद लीजिए एफएम शिमला पर।

ईमेल्स हम तक आई हैं, भेजने वाले हैं डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप सुनना चाहते हैं इज्जत फिल्म का गीत, लिखकर भेज रहे हैं कि जलगांव में बारिश हो रही है गीतों की तरह और ये आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल शिमला में भी कुछ ऐसा ही मौसम है कि दिन भर यहाँ हमने भी रिमझिम बूंदों का आनंद लिया है।

तो गीत बेहद खूबसूरत है, लेकिन आपके नाम भी उतने ही खूबसूरत है, जिन्हें जब हम पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे जो प्यारी सी मुस्कान आती है ना, उसे देखकर हमें सुकून मिलता है। दुर्ग से ईमेल आई है, भेजने वाले हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आप ही के साथ ईमेल भेजी है यासीन अंजान और सायमा नवाज ने झारखंड से। राजू राजपूत, मनुका बाई, नंदनी बाई, रुद्र राजपूत, नंदलाल राजपूत एमपी से हमें ईमेल कर रहे हैं। पारस मणि वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल और ये ईमेल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ईमेल भेजी है

भिड़ने वाले हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका, अजय और करिश्मा अविका भी आपके साथ जो है ईमेल में शामिल हैं।

0: रहे।
1: उत्तर प्रदेश से इरशाद अहमद शाहजहां बेगम हमें मेल कर रहे हैं और बहुत सी मेल्स अब भी हम तक आ रही है। रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांशु वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा,

मंगल वेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल आप ईमेल कर रहे हैं इज्जत फिल्म का गीत कार्यक्रम में सुना चाहते हैं। अली अनवर, रिजवाना प्रवीण, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक और अजहर अली अंसारी ईमेल हमें कर रहे हैं। इंद्रभान सिंह और उनके साथी कालरी से ईमेल आपकी हम तक आई है। यशवंत साहू, रमेश जी हाँ, हर्ष और अंश साहू

जानते हैं हम कि गीत का आनंद भी लेना चाहते हैं आप, लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अब भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाम सुनने का। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, चंडीगढ़ से इनकी ईमेल हम तक पहुँची है। विक्रम, सचिन, सतीश, यहाँ योगेश और युधव, आप सबका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी राजस्थान से।

0: अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति जी हाँ कुमारी और बेनपट्टी मधुबनी बिहार से भी शामिल हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशा जी हाँ दिशानी और निमित आहूजा, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश आप छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
1: बातों का
0: समय हो रहा है और ईमेल्स अब भी आ रही है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह की, मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा खेड़ा से, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया हरियाणा से, हर्ष, विनय, विनीत, राजेश भाई चंडीगढ़ से, शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा हिमाचल मनाली से ईमेल हमें कर रहे हैं, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित और सुरेश गगनेजा, नेहा जैन, विनोद मुनत, दीपक, मयंक, चेतन नहाटा, आकाश, कमलेश, गुन्नू, मुरली और के आर साहू, बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु और पौरुष आपकी ईमेल शामिल कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी की भी ईमेल कार्यक्रम में ना छूट जाए। दातार सिंह, संगीता कंवर, तुषार सिंह राजस्थान से, सुभाष, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु पंजाब से शामिल हुए हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आखिरी में मेल शामिल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। आज का ये सफर हमने और आपने मिलके तय किया 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। आज की हमारी फिल्में थी मिलन, पत्थर के सनम, आराधना और इज्जत, बेहतरीन नगमों के साथ प्यारे प्यारे नाम आपके शामिल हुए इस कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि सभी की ईमेल शामिल हुई होगी, ना हुई हो तो दोस्त नाराज मत होइएगा, आज नहीं तो कल आपकी भी ईमेल शामिल होगी। जिन्होंने ईमेल नहीं भी की है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और गजलों से सजा गुलदस्ता पेश करते हैं आप सभी के लिए। दोस्तों गजलें

सोचा है क्या है ये गज़लें। ज़िंदगी की भाग दौड़ में जब हम कभी थक जाते हैं ना, तो ये गज़लें सुकून लाती है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव भी होना भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए आप भी बैठिए, आंखें मूंद लीजिए और दिल से सुनिए हमारे संग गज़लें FM शिमला पर। आगाज़ कर रहे हैं गुलाम अली साहब की आवाज़ में, लीजिए सुनिए।

महफिल यूं ही सजती रहे, सुरों का कारवां यूं ही चलता रहे, आपका प्यार और साथ यूं ही मिलता रहे दोस्तों, हर शाम गजलों के नाम होती रहे। मिताली सिंह को अभी आपने सुना गजलों में, आइए भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में पेश कर रहे हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल।

गजलें जिंदगी में ठहराव लाती है तो कुछ ही पल के लिए, लेकिन सुकून लेकर आती है। इसी सुकून और ठहराव के साथ फिलहाल गजलों में आज बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला। रात्रि के 10:30 और 28 सेकंड हो चुके हैं। समय हो चला है कार्यक्रम में अब आगे बढ़ने का, और पेश करने जा रहे हैं हम आप सभी के लिए सदाबहार नगमे। तो आइए, सदाबहार गीतों में कुछ बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। आगाज़ कर रहे हैं मेरे सनम फिल्म के इस गीत के साथ।

एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए पेश कर रहे हैं हम आप हम साया फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

चलिए कार्यक्रम में एक और कदम आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं आप सभी को। दो रास्ते फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मी का।

0: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा।
1: एक और प्यारा सा गीत आप सभी के नाम। जी हाँ, आराधना फिल्म का नगमा सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ लता मंगेशकर को लीजिए एक बार फिर से सुनिए अनपढ़ फिल्म से।

0: दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ आज के सफर में बस इतना ही, चलते चलते बस यही कहेंगे, खुश रहा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी FM शिमला पर। रात्रि के 11 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं।

0: पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
0: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal